मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीईटीए आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता डीसीसी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन सीईटीए और डीसीसी का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथे से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का

0: लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, और आराधना की शुरुआत इस गणपति वंदना के साथ।

जिसे एक बार हीरा प्राप्त हो जाए फिर क्या वो कांच को चाहेगा? उसी प्रकार जिसे एक बार राम नाम रूपी धन प्राप्त हो गया हो फिर क्या वो किसी और मृत पदार्थ की चाह करेगा?

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: हम संसार में एकमात्र मोह करके ही फंस जाते हैं। अगर हम सब में भगवत भाव रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करें तो ये मोह भी मोह न रहकर ये ईश्वर का रूप ले लेता है, और ईश्वर का रूप लेने के कारण वो मोह हमें कर्म बंधन में नहीं बांधता।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लाला लाजपत राय के विचार।
1: भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तीन प्रमुख प्रवक्ता थे लाल, बाल और पाल। लाल से बोधन था लाला लाजपत राय के लिए, जिन्होंने जलियांवाला बाग की नृशंस बर्बरता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील कहा था। बाल थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा की थी। और पाल के रूप में याद किए जाते थे विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने स्वराज्य चरित्र के उद्घाटन के लिए देश को ललकारा था। राष्ट्रीय जागृत के साथ साथ जीवन की समस्याओं के विश्लेषक और वैश्विक संकल्पनाओं के उद्गाता के रूप में लाला लाजपत राय के विचार आज भी हमारे लिए दिव्य आलोक प्रदान करते हैं। मृत्यु, धर्म, युद्ध, श्रम, शिक्षा, क्रांति, शांति आदि सभी मसलों पर उनकी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि में धर्म चिंतन मात्र नहीं है, अपितु चिंतन और आचरण है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा था, किसी भी धर्म मत को आदर्श और निर्दोष बनने के लिए मानव स्वभाव के उन सभी पक्षों के सामंजस्यपूर्ण विकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जो उसके भौतिक जीवन के आधार का निर्माण करते हैं। सामाजिक पक्ष की उपेक्षा तो वो कर नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य को समग्रता में समझने का उनका प्रयास था। धर्म को मानव के स्वभाव, उसकी भौतिक आवश्यकता को समझने और उसके परिष्करण का कार्य करना पड़ता है। जो धर्म जीवन की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करके चलता है, उसके आचरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। जीवन और मृत्यु की पहेली मानव को भटकाती रही है। मृत्यु की भयावहता मानव को आशंकित और उद्वेलित करती रहती है। मानव जीवन की नियति और परिणत का शाश्वत प्रश्न सही जीवन दृष्टि की मांग करता है। लाला लाजपत राय ने इस संबंध में कहा था, गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए मनुष्य को पहले गरिमापूर्ण ढंग से जीना सीखना चाहिए। वही मृत्यु भव्य है जो भली प्रकार जिए गए जीवन अर्थात सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि के लिए और मानवता के लिए जिए गए जीवन के प्रासाद का शिखर बनती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अर्थ है परहित में रत होना, पर पीड़ा से बचना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि से अपने को बचाना, देश, समाज और मानवता के हित चिंतन का अनुदिन स्मरण और तदनुरूप आचरण। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति उस गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्णन कर सकता है जिसकी वो आकांक्षा करता है। लाला जी ने कहा था, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से। उनका संदेश है कि मुसीबतों को हौसले से झेलो, इनसे घबराना अपने काम को बिगाड़ना है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है।
0: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लाला लाजपत राय के विचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को आज हम सुनवा रहे हैं बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती विषय पर कोमल सिंह यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।
1: किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ आज देखा कृषि विविधीकरण की ओर भाई जोर दिया जाता है कि भाई चार पैसा के आमदनी हो, ऐसे उपाय कृषि में हो चाहिए। तो भाई कृषि विविधीकरण का अगर बात आवत है तो हमें बागवानी एक महत्वपूर्ण एकर क्षेत्र बाटे। तो बागवानी जो फसल बाटे ओकर व्यावसायिक खेती कैसे की जाए आज एक बिना जानकारी दे के खातिर हमारे बीच में कोमल सिंह यादव जी हैं। आप कुलभास्कर आसम पीजी कॉलेज में भी कार्यरत हैं और यह विषय के जानकार हैं। श्री कोमल सिंह यादव जी आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे।
2: धन्यवाद।
1: हम अपने किसान भाइन के लिए जानब की जो बागवानी खास करके जो जो होता है व्यावसायिक खेती कैसे की जाए एक बारे में विस्तार से बताएं।
2: जी देखें किसान भाई, बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती से तात्पर्य फल है, सब्जियां हैं, फूल हैं, मसाले हैं या औषधीय खेती हैं जिनका लाभ कमाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। इसमें क्या है, उत्तम जो उन्नत किस्मों का चयन करें, सिंचाई का प्रबंध करें, संतुलित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें, कीटनाशक नियंत्रण करें एवं आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करें, अच्छी पैकेजिंग। देखिए इसमें किसान भाई इस बात का अवश्य ध्यान दें कि बागवानी फसलों में केवल फसल का उत्पादन करना ही नहीं महत्व है, उसके साथ उसकी पैकेजिंग करें, उसका भंडारण करें, समय से मार्केट में पहुंचाएं, ये चीजें को किसान भाई विशेष तौर से ध्यान देकर।
1: का मतलब ये कि एकर एक जो व्यावसायिक रूप से उत्पादन के साथे साथे जौना है ओका केह धरे से बाजार में प्रस्तुत करे बाटे एकर भी विशेष ध्यान दे के आवश्यकता बाटे। तो एक देखें किसानन के लिए भी हमेशा प्रयास किए जाता है कि उनका आय दुगनी कैसे हो, तो बागवानी के जरिए वो अपन आय किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं इस पर प्रकाश डालें।
2: देखें किसान भाई इस बात को आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर एक बात तो निकल कर आती है कि किसानों की आय दोगुनी हम कैसे करें या किसानों की आय, एक सरकार हमारी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन था कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। तो किसानों की आय दोगुनी कैसे, उसको अगर किसान भाई थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान दे लें तो बहुत आसानी से उनकी जो है आय दोगुनी हो सकती है। सबसे पहला काम वो जो खाद एवं उर्वरक है, उर्वरक पर ध्यान दें। हम प्रायः किसान जब क्षेत्र में जाते हैं देखते हैं तो किसानों की सबसे बड़ी चीज़ें क्या हैं, अपने मिट्टी की जाँच नहीं करवाएंगे और अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग करेंगे। जहां उनको चाहिए आवश्यकता है 10 किलो वहां पे वो 20 किलो 25 किलो डाल रहे हैं, इससे उनकी जो लागत है वो बढ़ रही है। हर किसान के पास अमूमन क्या होता है कि पशु होते हैं दो चार, कुछ नहीं करना है किसान को, अपने यहाँ एक बर्मी कंपोस्ट अगर वो बना ले, बर्मी कंपोस्ट बना ले, कुछ नहीं केवल जो है एक 7 फीट का लंबा गड्ढा बना ले, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा बना ले और गोबर को उसमें डाल करके उसको पानी की छिड़काव करके उसको ठंडा कर दे और फिर केचुआ डाल दे, उसके बाद वो लगभग 70 से 80 दिन में बर्मी कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाती है। उर्वरक की जगह पे आप उस बर्मी कंपोस्ट को प्रयोग करिए, उससे क्या होगा, बर्मी कंपोस्ट से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि एक तो फल की क्वालिटी अच्छी आएगी और उसमें कीड़े और मकोड़े, चूंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करता है, तो उससे क्या होता है कि कीड़े और मकोड़े भी कम लगते हैं, किसान की लागत कम आती है, तो इससे एक फायदा हुआ उसके किसान की आय बढ़ गई। दूसरा, बागवानी अगर किसान ने किया है तो उसके बगल बगल आप पपीता की खेती कर लीजिए, वो आपकी एडिशनली अतिरिक्त इनकम हो आय हो जाएगी, या उसके बगल बगल आप गेंदा की खेती कर लीजिए। गेंदा की खेती करने से आपका फायदा क्या है, किसान भाई इसको समझें कि गेंदा जो होता है हमारा ट्रैप का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हो जिसको फंसा लेता है और हमारे पौधे उससे बच जाते हैं। तो इससे किसान भाई जो है लागत को कम करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और दोगुना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए जब बागवानी की बात आवत है तो भाई देखा है और भी जब कृषि क्षेत्र का हम बात करी थी चाहे अनाज उत्पादन का हो तो भाई एक अच्छा खासा क्षेत्रफल खेती के लिए होता है लेकिन

0: बागवानी के लिए उतना क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है, बहुत
1: जी
0: कम
1: जी
0: भूमि की
1: जी
0: आवश्यकता
1: बिल्कुल
0: पड़ती है। तो एके बिना जिसे भूमि कम है तो वह के ढंग से अधिक लाभ ले सकते हैं, कौन तरह से ऐसा पौधा है बागवानी में जिसका लगाए के अपने किसान भाई लाभ से सकते हैं।
1: देखिए, हमारे आसपास जो खास तौर से जो देखा जाए तो जो हमारा रीजन है, जो हमारा क्षेत्र है, इसमें जैसे प्रतापगढ़ का आप क्षेत्र ले लेंगे तो वहाँ पे आंवले का अच्छा खासा जो है खेती होती है। दूसरा आप इलाहाबाद का रीजन, यहाँ पे अमरूद की खेती अच्छी होती है। तो आंवला और अमरूद, अगर उसी के साथ हम पपाया की खेती ले लें, पपीते की खेती ले लें, तो उससे जो है किसानों को लाभ मिल जाएगा। किसान भाई यहाँ पे ध्यान दें, गलती कहाँ करता है किसान? किसान जो है जैसे एक अंतरण होता है, अंतरण का ध्यान नहीं देता है। तो अंतरण का ध्यान जरूर दें। जो एक वैज्ञानिक हमने फिक्स कर रखा है कि आम 10 × 10 मीटर पे लगता है, या पपीता है 2.5 × 2.5 मीटर पे लगाते हैं, तो इस चीज़ का वो अवश्य ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू वैरायटी, जो अंतरण है वो वैरायटी पे भी वेरी करती है। आप पूसा नन्हा ले आएंगे तो उसका अंतरण दूसरा होगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है?
0: बिल्कुल
1: तो उसका ध्यान रख करके स्पेसिंग का जरूर ध्यान दें। उससे क्या होता है कि उनको जो है, किसानों को एक तो कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, सिंचाई की सुविधा होती है, और उसकी जुताई भी अच्छे से कर सकते हैं, निकाई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। इस बात का किसान भाई अवश्य ध्यान रखें।
0: बिल्कुल। ये बागवानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाई सिर्फ फल उत्पादन के साथ साथ तरह तरह के भी अवसर देत है, खास कह के इसमें एक रोजगार का भी एक अलग क्षेत्र विकसित हो जो है, तो
1: जी,
0: इसमें किस तरह से रोजगार मिल सकता है, खास करके जो व्यावसायिक रूप से जो बागवानी खेती की गई।
1: देखिए, व्यावसायिक खेती में अगर आप रोजगार के अवसर ढूंढेंगे तो बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। हम सबसे पहले तो यही करें कि जब हम अपना खेत, जो बागवानी लगाते हैं, तो बागवानी में जैसे आम का लगाएंगे तो 10 × 10 मीटर पे जो अंतरण होता है उसमें इतना जगह होता है कि उसमें आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जब आपने सब्जी की खेती किया तो उससे क्या हुआ, एक हमें लेबर की जरूरत होगी, तो स्थानीय स्तर पे वहाँ पे लेबर का समायोजन हो गया, पहली बात। फिर जब हमारी फसल तैयार हो गई, मान लीजिए हमारी बाग तैयार हो गई, बाग तैयार होने के बाद हम फल की तुड़ाई करेंगे, फल की तुड़ाई करके उसको ले जाएंगे मार्केट में, तो जो फल की तुड़ाई करने और मार्केट में ले जाने में है, उसमें भी रोजगार के अवसर सृजन होंगे। इसके साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी के जो क्या फ्रूट्स होते हैं, उनको विदेशों में भी निर्यात किया जाता है।
0: बिल्कुल
1: जब हम
0: बिल्कुल
1: विदेशों में उसका निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो इसके माध्यम से जो है कई सारे रोजगार के अवसर और चीजें हैं। रोजगार के
0: बताएं।
1: अवसर सृजन करने से एक तरी और चीजें हैं कि आप उसके बाय प्रोडक्ट बनाएं। जैसे आपका जो है आंवला है, आंवले से आपने अचार बनाया, ठीक है?
0: बिल्कुल
1: अचार की पैकेजिंग हुई, उसको आपने जो है ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में भेजा, फिर आप आंवले से मुरब्बा बनाया, मुरब्बे से भी आप जो है वही प्रक्रिया अपनाएंगे और मार्केट में भेजेंगे, मार्केट में उससे जो है हमें धनार्जन होगा। ऐसे आम है, तो हर चीज़ के जो है बाई प्रोडक्ट बनते हैं, उसके माध्यम से जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध
0: अच्छा,
1: हुए हैं।
0: बागवानी से जो पोषण सुरक्षा खास के बाद एकर का तात्पर्य बाटे कैसे का सुनिश्चित करते हैं पोषण सुरक्षा।
1: देखिए, बागवानी से पोषण सुरक्षा खास तौर से देखा जाए, जो आप अगर उस बाग के बारे में पूछ रहे हैं, तो पोषण के बारे में तो यह है कि हम सबसे पहले उसको संतुलित उर्वरक दें, एक जो चाहे प्रति पौधा हो या प्रति एकड़ हो, तो उसको हम संतुलित दें। जब हम कभी भी बागवानी में बागवानी लगाने के बारे में सोचें या बागवानी लगाएं, तो उसमें किसान भाई इस बात का अवश्य ध्यान दें कि हम जो है गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का अवश्य प्रयोग करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बर्मी कंपोस्ट है, तो बर्मी कंपोस्ट का जो है अवश्य प्रयोग करें।
0: खास करके देखा फल उत्पादन भाई चाहे अमरूद हो आंवला हो ऐसे जो जुड़ा उत्पाद बनाता है, तो
1: जी,
0: इनका विदेशी जो मुद्रा अर्जित करे के बार संभावना एक कितना एक दायरा बढ़ सका था, किसान के कितना इसे लाभ हो सका।
1: देखिए, इसका दायरा तो असीमित है विदेशी मुद्रा का, क्योंकि देखा जाए इस समय जो है हमारा खास तौर से उत्तर प्रदेश, मुझे जो एक्चुअल डाटा याद आ रहा है, शायद सब्जी के प्रोडक्शन में नंबर एक हो गया है। तो जब हमारे यहाँ या और फ्रूट का भी ठीक ठाक जो है प्रोडक्शन हमारे यहाँ उत्पादन होता है, तो जब हम इन सब चीज़ों को विक्री करेंगे विदेशों में, तो अच्छी मात्रा में जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सकता है। उससे हमारे देश का तो साख बढ़े ही बढ़ेगा, साथ में हमारे किसानों की जो माली हालत है उसमें भी सुधार होगा।
0: बिल्कुल, हम कहे किसान भाई देखा बागवानी फसलों जो व्यावसायिक खेती बाटे उसे कई के कई तरह से लाभ अर्जित किया जा सकता है, यह विषय में आप इतनी बढ़िया जानकारी दें, आप जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती विषय पर किसान भाई अभी सुन

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर यशवंत कुमार की वार्ता, पैरालिसिस में कारगर फिजियोथेरेपी।
1: पैरालिसिस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर चलता है या बाहर से वातावरण से सूचनाएं लेता रहता है और दिमाग को भेजता रहता है, दिमाग उसका विश्लेषण करने के बाद फिर निश्चित मांसपेशियों को आदेशित करता है कि वह हमारी इच्छा अनुसार काम करें। जब हमारा शरीर और हमारा ब्रेन का या मांसपेशियों का यह सामंजस्य बिगड़ जाता है तो इसी को हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। तो जो पैरालिसिस होने का कारण है वो कई तरीके का हो सकता है, कई भागों में हम लोग एक बांट सकते हैं। एक कारण तो यह होता है कि अगर हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में, नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जो बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है या वायरस के द्वारा हो सकता है, तब हमें समस्या आ जाती है कि हम अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमारे ब्रेन में किसी तरीके की डायरेक्ट चोट हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, हमारे गिरने की वजह से हो सकती है, लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकती है, तो इस तरीके से जो चोट आती है हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कार्ड में, तब ये पैरालिसिस समस्या आती है। तीसरा, हम लोग जो देख सकते हैं कि आज जो सबसे बड़ा दुनिया में हमारे कारण बना हुआ है कि हम लोग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्यायाम का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं हमारे खुद की जीवन शैली प्रभावित करने से ये खराब होने की वजह से डायबिटीज़ की समस्या हो रही है, हाइपरटेंशन की समस्या हो रही है, जिसके कारण से हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो जो ब्रेन की कोशिकाएँ हैं उनको न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से वो कोशिकाएं मर जाती हैं, और ब्रेन की कोशिकाएं एक बार मर जाती हैं तो वो दोबारा संभव नहीं होता है कि वो पुनः अपने काम में वापस आ पाएँ। इसीलिए पैरालिसिस के व्यक्ति में पूरी तरीके से रिकवरी कभी कभी नहीं हो पाती है। और जो इसमें फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपी के लिए यह देखना है कि जो हम काम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो, उसके लिए बार बार उस काम को कराने की आवश्यकता है। तो पैरालिसिस के व्यक्ति में यही सिद्धांत पूरी तरीके से लागू होता है कि जब मरीज को तुरंत का अगर अटैक हो गया है, अस्पताल में मरीज भर्ती है, तो समय हमारा उद्देश्य ये होता है कि मरीज को बेडसोर ना होने पाए और उसके जितने हाथ और पैर के मूवमेंट हैं वो मेंटेन रहें, यानी कि जोड़ पूरी तरीके सामान्य तौर पर चलता रहे। दूसरा, जो मांसपेशियों की निश्चित लंबाई है वो बनी रहे, तो उसका हम मूवमेंट जो है करते रहते हैं। जो भौतिक चिकित्सक होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है पैसिव मूवमेंट के रूप में इसको जानते हैं, और घर वालों को भी इसको सिखाया जाता है। और साथ ही साथ हम मरीज को अगर डॉक्टर ने बैठने की एडवाइस दी है तो हम मरीज को जल्दी से जल्दी बैठाने का काम करते हैं, करवट कराने का काम करते हैं, उतना ज़्यादा हम इसमें रिकवरी कर पाते हैं। अगर मरीज में कड़ापन जो है आ रहा है, धीरे धीरे स्पास्टिसिटी आ रही है, क्योंकि पहले शुरुआत में मरीज लुंज पुंज रहता है, ढीला रहता है, वो धीरे धीरे करके जब रिकवर करता है तो उसमें कड़ापन आता है, स्पास्टिसिटी आती है, तो जैसे जैसे स्पास्टिसिटी आती ही जाती है उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से यूज करते जाएंगे, प्रयोग करते जाएंगे। इसमें आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि पैरालिसिस के मरीज को ठीक करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो काम कराना चाहते हैं मरीज से उस काम को कराने की कोशिश करिए। अगर हम पैरालिसिस के मरीज को ठीक करने की बात करें एक लाइन में कि क्या इसमें क्या उद्देश्य रहता है ठीक करने का, जो हम लोगों की ज़िंदगी चलती है कि जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को निश्चित करते हैं और काम करने में शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन जब बार बार हम करते रहते हैं उस काम को हमारा ब्रेन जो है सीख लेता है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया लागू होती है कि अगर हम काम को बार बार कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमको वो काम होने लग जाएगा। धन्यवाद।

पैरालिसिस में कारगर फिजियोथेरेपी विषय पर अभी आप डॉक्टर यशवंत कुमार की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। रात 8:15 पर पूरी उड़ीसा में आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित कर्टन रेजर कार्यक्रम और रात 9:30 चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन, दिन में 12:15 पर उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन और रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन।

सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन। सुबह 10:05 पर वॉयस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभिनेत्री नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 10:30 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में कलाकार होंगे आकांक्षा भारती और साथी, कमला प्रसाद पाल और साथी और शोभा लाल और साथी। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00। दिन में 12:30 पर फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

दिन में 1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें मेरा हुनर मेरा व्यवसाय के अंतर्गत जानेंगी अगरबत्ती मोमबत्ती या साबुन निर्माण का लघु उद्योग के बारे में। शाम 6:30 ग्रामीण भाई डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी से सुनेंगे नीति वचन। शाम 7:31 पर बोलते नगमे और रात 8:30 सबरस। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292।

4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6-2 पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध रामकथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

अभी आप पंडित जसराज के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। फिल्मों से भजन में सबसे पहले हम आपको बाजीराव मस्तानी से प्रशांत इंगोले की लिखी हुई रचना सुनवा रहे हैं। संगीत है श्रेयस पुराणिक और जैकी वंजारी का, आवाज़ सुखविंदर सिंह की।

अभी आप फिल्मों से भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव, 3 गुना हुई राज्य की प्रति व्यक्ति आय। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में

0: समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव, 3 गुना हुई राज्य की प्रति व्यक्ति आय। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी की बातचीत। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर, लोकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने घोषित किया, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। कल लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है।
1: हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्कफोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहाँ हुई है।
0: विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में कौशल विकास, रोजगार और उद्योगों से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने कल लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी। एक रिपोर्ट।
2: उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। समाचार से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञान वापी प्रकरण को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक हुई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञान वापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की

0: 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। पुलिस की टीम आज उनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लोकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर कल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण में ओएसडी महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें 15 जुलाई तक मानचित्र व अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
1: इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है, इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई है जेई के द्वारा, तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहले नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कल इस संबंध में हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए। प्रदेश में टीबी उन्मूलन की प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में कल एक टेक्निकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े देश भर के 60 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल माध्यम से कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और जन भागीदारी प्रदेश की टीबी उन्मूलन यात्रा के मूल आधार हैं। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं बल्कि पूरे समाज और विकास से जुड़ा साझा लक्ष्य है। एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने कहा कि एम्स गोरखपुर टीबी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: एसओपी संशोधन के अनुसार अब होमस्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकते हैं। 9 कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डॉर्मेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूअल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 3 माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने कल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भर्ती बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव, 3 गुना हुई राज्य की प्रति व्यक्ति आय। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी की बातचीत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लोकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने घोषित किया उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर राग अहीर भैरव, आलाप जोड़ और झाला गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपके साथ संगत की उस्ताद निजामुद्दीन खान ने। तो आइए सुने पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर राग अहीर भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर राग अहिर भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपके साथ संगत की उस्ताद निजामुद्दीन खान ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में

0: रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें टिकाऊ टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे

0: रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया।

0: जय रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत बरतानिया जामे इकतसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौइयत की मादनी

0: नाथ के ब्लॉकों की नीलामी के आठवें मरहले का आगाज करेगी। अमेरिका ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एट बेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी व तजारती माहिदा आज से अमल में आ गया है। इसके साथ साथ गुजर बसर से मुतालिक समझौता दोहरे ताउन का कन्वेंशन DCC भी नाफिज हो गया है, जिसके तहत बरतानिया में भारतीय पेशावर अफराद की आमद रफ्त और मुसाबकत को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस अहम समझौते के तहत भारत के बरामदकारों को बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे भारत और बरतानिया की दिफाई शराकतदारी को गहरा करने और दोनों मुल्कों के आवाम में मजीद खुशहाली लाने के मुश्तरक अज़्म का इजहार होता है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती माहदे को भारत के तिजारत के सफर में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल के लिए ताबनाक इक्तसादी शराकतदारी को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। दोहरे ताउन के कन्वेंशन DCC का जिक्र करते हुए जनाब अग्रवाल ने कहा कि इस बंदोबस्त से बरतानिया में भारत के पेशावर अफराद और उनके आजिरों को फायदा हासिल होगा। ज़िराअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी, रियासती काबीना के अरकान और मरकजी व रियासती सरकार के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। जनाब चौहान ने ऐलान किया कि मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की मंजूरी दी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मीटिंग में सड़कों, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयले और मेहनत के शोबों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक 19 बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। जमीन को कब्जे में लेने, बाजाबादकारी, जंगलात से मुतालिक मंजूरियों और बैन महकमा जाति तालमेल से मुतालिक मामलात को हल करने की हिदायत दी गई ताकि प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। मरकजी वजीर ने अमल दरामद में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्टों पर नजर रखने के रियासती सतह के ग्रुप कायम करने की भी तजवीज रखी। वजीर मौसूफ ने फसलों में तनोव लाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तोसी देकर किसान क्रेडिट कार्ड की तादाद में इजाफा करके कुदरती ज़राअत, डिजिटल एग्रीटेक और गज़ाइयत में इजाफे के प्रोग्रामों को फ़रोग देकर ज़राअत को मुस्तहकम बनाने के इकदाम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मरकजी और रियासती मिलकर काम करेगी। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: कोयले और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स की नीलामी के आठवें मरहले का आगाज करेंगे। कानों की वजारत ने कहा है कि ये नीलामी 9 रियासतों में वाकई 20 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स के लिए होगी, जिनमें 13 नए निशानजद ब्लॉक्स और दूसरी मरतबा पेश किए जाने वाले 7 ब्लॉक्स शामिल हैं। ये मादनियात साफ सुथरी तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, खाद, दिफा और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों के लिए अहमियत के हामिल हैं। वजारत ने नीलामी के 7 मरहलों की तकमील समेत 88 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स में से 56 की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। इस तरह 63% से ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। भारत आज से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस 2 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उन्वान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर के लिए, के तहत यह इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाब्ता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलामियों को गौर खोज के बाद अपनाया जाएगा।

0: इस एलामिया का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनतकशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियत रोजगार पर तआवुन को तकवीत देना है। पवित्र शहर पुरी कल से शुरू होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज पवित्र नाबा जोबन दर्शन के बाद सालाना रथ यात्रा के लिए वसी तर इंतजामी और सिक्योरिटी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सालाना मुख्तसर पड़ाव देवी देवता बहन भाइयों की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीमुशान रियासती सतह के प्रोग्राम में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस तकरीब में वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ इकदामात का आगाज करेंगे, जिनका मकसद रियासत में हुनरमंदी, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को मुस्तहकम करना है। वज़ीर-आला हुनरमंदी की तरक्की से मुतालिक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे, जहां इख्तिराई टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी पर मबनी मसनूआत और सनती तरबियती इदारों, ITIs तरबियती इदारों और ज़ेर तरबियत अफराद के जरिए तैयार करदा प्रोजेक्ट्स का मुजाहरा किया जाएगा। हुकूमत ने 19 ज़ैली शोबों के लिए मुल्क का खिदमात की पैदावार का पहला आजमाइशी इंडेक्स ISP जारी किया है, जिसमें पहली बार ऐसा है कि बाकायदा खिदमात के शोबे में मुख्तसर मुद्दत की सरगर्मी का माहाना पैमाना फराहम किया गया है। इस पहले इंडेक्स में 2024-25 को बुनियादी साल मानते हुए अप्रैल 2026 को भी शुमार किया गया है और भारत के खिदमात के शोबे के तकरीबन 60% हिस्से को शामिल किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका ने आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर लोग आबनाए हुरमुस से गुजरना चाहते हैं तो वो खुली है, अलबत्ता ये ईरान के लिए नहीं खुली है। जनाब ट्रंप ने ईरान को यह कहते हुए खबरदार किया कि अमेरिका आज रात ईरान पर सख्त हमला करेगा और इन हमलों की शिद्दत हर रात के बाद बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के सभी बिजली प्लांट्स और पुलों को तबाह करता रहेगा जब तक कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार न हो जाए। जनाब ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि हर बार ईरान की तरफ से जंगबंदी का सिलसिला तोड़ा जाता है। उन्होंने ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है कि बेहतर है कि वो एक मुआहदा कर ले, वरना वहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान ईरान के पासदाराने इनकलाब ने बहरीन में बड़े पैमाने पर हथियारों और कलपुर्जों के जखीरे पर हमले किए हैं। पासदाराने इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि उसने रैम पर, जहाँ कुवैत में अली सलीम ठिकाने पर MQ-9 ड्रोन्स तैनात थे, हमला करके बहुत से ड्रोन्स को तबाह किया है और नुकसान पहुँचाया है। भारत ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी और तजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद वो मगरबी एशिया के हालात और वाकयात पर करीबी निगाह रखे हुए है। नई दिल्ली में नमनिगानों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आबनाए हुरमुस से तजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आबनाए हुरमुज में दो मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तशवीश के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाजे से मुतासर खत्ते में काम करने वाले भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेयर फर्स्ट पहल का आगाज किया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्दअमल की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में आला सतही बैन वजारती जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब सोनोवाल ने हर एक बहरी जहाज की हकीकी वक्त में निगरानी करने और खित्ते में मुतासर हर भारतीय जहाजरान के लिए मखसूस लाइजन अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत और वजारत खारजा, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कीमिया और खाद की वजारत, भारतीय बहरिया, जहाजरानी के डायरेक्टोरेट जनरल और ईरान और ओमान में वाक़ भारतीय मिशनों के दरमियान 24 घंटे तालमेल कायम करने की भी हिदायत दी। नई दिल्ली से सकलन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बावर्ती होकर अपने असातिज़ा और वालिदैन का साथ दिया। इन लोगों ने रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा होकर इस मकबूजा

0: इलाके में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत की। स्कूल जाने वाले तलबा पीर को बड़े पैमाने पर जमा हुए। ये लोग अमन की निशानी के तौर पर सफेद झंडे लहरा रहे थे और इनके हाथों में बैनर्स थे जिन पर लिखा था, बैनुल अक्वामी मीडिया हमें भी शामिल करो। ये लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। पाकिस्तान के जेर कब्जा पूरे इलाके में ये मुजाहरे खित्ते में पाकिस्तान के दीरीना कब्जे के लिए एक बराह रास्त चैलेंज बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों ने वहशियाना कार्रवाई शुरू कर दी है जिनमें दसियों शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ खित्ते में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू नाफिज है, नीज मवासलात का सिलसिला पूरी तरह मुनक़ता हो गया है। अखिलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात अमेरिका के टेक्सास के डलास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से माइकल ओयारज़बल ने 22वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल करते हुए स्पेन की जीत यकीनी बना दी। अब इतवार की रात न्यू जर्सी के मीट लाइफ स्टेडियम में फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने 16 साल पहले अपना पहला फुटबॉल कप जीता था। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बर्मिंघम के एडबिस्टन में खेले गए 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजारत खारजा के बयान को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, हुरमुज में भारतीय शहरी की हलाकत पर भारत खफा, वजारत खारजा ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और दीगर सिफारतकारों को तलब किया, समुद्र में जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सलाह दी। रोजनामा इनकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर शाये करते हुए सुर्खी लगाई, भारत ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की उम्मीदवारी पेश की, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने माल बर्दारी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 8 नई असलाहत का ऐलान किया। इसी अखबार ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है, NESAC खलाई टेक्नोलॉजी को आवाम की जिंदगी से जोड़ने का अहम जरिया बन चुका है। अखबारात की कुछ अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, अब नए हुरमुज जंग या अमरीकी दबाव से नहीं खुलेगी, ईरान का बयान, अब नए हुरमुज से आमदोरफ्त पर कोई फीस या टोल कबूल नहीं, यूरोपीय यूनियन का बयान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, बरतानिया, भारत बरतानिया जामे इकतसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आज़ाद रहेंगी। मरकज़ ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है, उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ODI में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
3: कोविड उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सशक्त कौशलों से लैस करने के महत्व की, यानी विश्व युवा कौशल दिवस की, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 से हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 15 जुलाई 2004 को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तब से हर साल 15 जुलाई को हम विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रोताओं, आजकल की इस बढ़ती जनसंख्या के बीच में युवाओं की केवल डिग्री के आधार पर योग्यता नहीं देखी जाती, बल्कि उनमें कौन सा हुनर है ये भी मायने रखता है। इस समय की मांग है रोजगार परक शिक्षा, और हमारे युवाओं को भी अब केवल पारंपरिक पढ़ाई के तरीकों तक ही सीमित नहीं रहना है, केवल डिग्री ही नहीं लेनी है, बल्कि अपने सुनहरे और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करनी है और अपने कौशल विकास पर ध्यान देना है। आज हर युवा को एक अदद अच्छी नौकरी मिल जाए, वो भी सरकारी, तो ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तब आसान हो जा सकती है जब आपके पास कोई हुनर हो।

श्रोता, हम बात कर रहे हैं कि आजकल के हमारे युवा केवल पढ़ाई तक ही सीमित ना रहें, अपने अंदर कुछ हुनर भी पैदा करें, और आपको हम उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा अगर बताएं तो दुनिया भर में 273 मिलियन बच्चे और युवा अभी भी स्कूल से बाहर हैं। 15 से 34 साल के एक में से पाँच युवा औपचारिक शिक्षा या फिर ट्रेनिंग से दूर हैं। नीट युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। यहाँ पे नीट का मतलब है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। ऐसे युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। हाल के वर्षों में करीब 267 मिलियन युवा इस श्रेणी में आते हैं। युवा बेरोजगारी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बनी हुई है। इसलिए स्किल न केवल नौकरी मिलने में सहायता करता है बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और समाज के निर्माण की ताकत भी देता है। हमारे देश में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ITIs और विभिन्न योजनाएं युवाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। स्किल इंडिया का उद्देश्य है युवाओं को वैश्विक स्तर के कौशल से जोड़ना। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी से लेकर कारपेंट्री, प्लम्बिंग, कुकिंग, ब्लॉगिंग, सिंगिंग, डांसिंग तक हर वो काम जिसमें आप कुशल हैं वही आपका कौशल है और आपके भविष्य की नींव भी। हम सबको याद है जब कोरोना के समय काफ़ी लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, तब बहुत से लोगों ने इस कठिन समय में अपनी पूरी हिम्मत के साथ ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए ही नई नौकरियां हासिल की और जिन बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी उन्हें भी ऑनलाइन शिक्षा से सहायता मिली जिससे वो आगे बढ़ सके। तो श्रोताओं, इंतज़ार किस बात का, आज ही अपने पसंद के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों के लिए मिसाल बनिए। और हाँ, साल 2026 का थीम भी यही है कि स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, यानी हम अपने अंदर हुनर पैदा करें और एक समृद्ध और सुखद और एक अच्छे भविष्य को साझा करें।

श्रोताओं, ये तो सच है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, चाहे वो हुनर हो, क्योंकि हुनर के लिए भी तो थोड़ी मेहनत और थोड़ी लगन की ज़रूरत होती है। और आपको बताएं कि थॉमस एडिसन ने कहा था कि सफलता 1% होती है, सफलता के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो केवल 1%, और बाकी 99% हमारी कड़ी मेहनत होती है। तो 99% पे हम ज़्यादा ध्यान दें बजाय 1% पर, और रोज़ कुछ ना कुछ हम नया सीखें, क्योंकि जो ठहर जाता है वो आगे बढ़ नहीं पाता, और जो पानी अगर रुक गया तो वो भी सड़ जाता है, और जो चलता रहे वो समंदर बन जाता है। तो हमें हमेशा चलते रहना है, रुकना नहीं है। और हाँ, चलते चलते आपको एक चीज़ और बता दें कि आज 15 जुलाई को क्या हुआ था, विश्व युवा कौशल दिवस तो हम मनाते ही हैं, साथ में हम आपको ये बता दें कि आज ही के दिन साल 2010 में भारतीय रुपए का जो आधिकारिक प्रतीक चिन्ह र है वो अपनाया और जारी किया गया था, और इस प्रतीक को IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र डी उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और ये जो डिज़ाइन है वो देवनागरी लिपि के अक्षर र और रोमन लिपि के अक्षर आर का मिश्रण है। इसमें ऊपर बनी जो दो समानांतर रेखाएं हैं वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और एक संतुलित अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो हमें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि हमारे रुपए का जो प्रतीक है वो देने वाले हमारे अपने ही देश के एक होनहार छात्र रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह!
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और ये पहला गीत हम आपको कोयला फिल्म से सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। इंदिवर ने लिखा है, राजेश रोशन ने इसकी धुन बनाई है। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में लीजिए सुनिए कोयला फिल्म का ये गाना।

ये संगीत जो आप सुन रहे हैं वो है अनु मलिक का। गीत के बोल लिखे हैं राजन खेरा ने, आवाज़ें हैं विनोद राठौर और साधना सरगम की, और फिल्म है द जेंटलमैन।

ये आकाशवाणी प्रयागराज है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हसनपुर में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि गुलाब देवी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व, राष्ट्रभक्ति एवं बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने संबोधन में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी चिंतन, संगठन निर्माण में उनके योगदान तथा राष्ट्र प्रथम की भावना पर विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अमरोहा में 8 जुलाई को मुख्य अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ एवं विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी ₹1200 का अंतरण कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 8000 तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 560 कुल 8560 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों, रसोइयों एवं अन्य पात्र कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने जनपद के कुछ शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह योजना शिक्षकों एवं उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भी हस्तांतरित की गई। अपने संबोधन में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि शिक्षा ही देश की उन्नति और विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने 7 जुलाई को अमरोहा के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के गौ आश्रय स्थलों एवं गौवंश संरक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उपाध्यक्ष ने गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पारदर्शिता के लिए सभी गौ आश्रय स्थलों पर भूसा भंडारण, क्रय विक्रय, दान स्टॉक एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सुव्यवस्थित रखने तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर पल निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा,
1: गो वंश को छोड़े ना, अगर किसी प्रकार की समस्या है अपने कोटे पर नहीं रख सकते हैं तो स्थानीय गौशालाओं में संरक्षित कराने का प्रयास करें। प्रत्येक गो वंश के लिए ₹50 भरण पोषण के लिए सरकार देती है। अकेला ऐसा राज्य जिसमें 16 लाख से ज्यादा गो वंश हमारे 7,700 गौशालाओं में संरक्षित किए गए हैं। 1,67,000 से ज्यादा गो वंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों के कोटे पर गौ माता गई है। आपके माध्यम से आह्वान करना है, उस गौ माता को अपने कोटे पर बांधे, सेवा करें। भारत की संस्कृति का मूल आधार गौ माता।
0: पहाड़ों पर हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने के बाद अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्र की सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। जिले के गंगा धाम तिगरी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा तट पर झोपड़ियां डूब गई हैं, जबकि खादर क्षेत्र में गंगा तट किनारे बसे 1 दर्जन गांवों के खेत व रास्ते जलमग्न हो गए हैं। इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्रामीणों को आवागमन और पशुओं के लिए चारा लाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया,
2: क्षेत्रीय SDM की अध्यक्षता में टीमें खुद ही जा रही हैं बाढ़ से प्रभावित गांवों में और लोगों को राशन का अरेंजमेंट करा रही हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे लोगों को शिफ्ट कराना पड़ सकता है, तो उधर शरणालय की हमारी तैयारी है। और जैसे ही बाढ़ का स्तर इस लेवल पे पहुंचता है कि वो हाई फ्लो लेवल को क्रॉस करता है, तो हम तुरंत उनको शिफ्ट भी कराएंगे। हर डिपार्टमेंट इसमें सेंसिटाइज है, हर किसी के रोल्स डिफाइंड है, वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन निरंतर जारी रख रहे हैं।
0: वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत अमरोहा में 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग सूर्य प्रकाश पाल, विधायक राजीव तरारा, जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। अपने संबोधन में सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोच्च रखा गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति माँ को समर्पित करते हुए कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं एवं उसकी देखभाल करें।
3: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
4: जनपद कानपुर देहात में प्रदेश राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने रविवार को जनपद के केंद्रीय विद्यालय नबीपुर में आयोजित बृहद वृक्षारोपण अभियान में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरहूब हुसैन का।
1: जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमरोहा में 30 जून को

0: का संकल्प लेने की अपील की। जनपद में बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और अन्य पात्र कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कानपुर देहात में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अजीत पाल ने इको पार्क में मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। कानपुर देहात में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ब्लॉकों और विद्यालयों में योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण देखा गया। राज्य मंत्री अजीत पाल ने कहा कि ये योजना प्रभावी संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। पात्र शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा, साथ ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया तथा अन्य पात्र कार्मिक और उनके आश्रित अब देश भर के आयुष्मान भारत से समृद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अध्यापक अनंत त्रिवेदी ने बताया,
1: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की शिक्षा मित्र, अनुदेशक और विद्यालय में कार्य कर रही रसोइयां इस योजना के अंतर्गत लाए हैं। निश्चित

0: मित्र, अनुदेशक, रसोईया तथा अन्य पात्र कार्मिक और उनके आश्रित अब देश भर के आयुष्मान भारत से समृद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अध्यापक अनंत त्रिवेदी ने बताया कि
1: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की शिक्षा मित्र, अनुदेशक और विद्यालय में कार्य कर रही रसोईयां इस योजना के अंतर्गत लाए हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ऐतिहासिक दिन है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए।
0: घाटमपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और भोगनीपुर से पूर्व विधायक रहे प्यारे लाल सखवार का बीते बुधवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनता दल तथा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में क्षेत्र की का प्रतिनिधित्व किया। वे सामाजिक न्याय और दलित समाज की मजबूत आवाज माने जाते थे। कानपुर देहात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित इको पार्क माती में आयोजित मुख्य कार्यक्रम सहित जनपद के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। पूरे जिले में योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य, फिटनेस और जन जागरूकता का संदेश दिया गया। जनपद में हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला है। धान, मक्का और अन्य खरीफ की फसलों की बुआई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी बनने से कृषि कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कानपुर देहात में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने जन संवाद, व्यापारी सम्मेलन, किसान चौपाल, योग शिविर, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, आयुष्मान कार्ड वितरण तथा लाभार्थी संपर्क जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देते हुए आमजन से संवाद किया तथा सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। पूरे अभियान के दौरान जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कानपुर देहात के एक दिव्यांग युवक ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ लेकर धीरज कुमार ने अपना उद्योग स्थापित किया और आज वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि 15 अन्य लोगों को भी रोजगार देकर समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ऋण और सरकारी सहायता प्राप्त कर अपना स्वरोजगार शुरू किया। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर उनका छोटा व्यवसाय आज एक सफल उद्यम का रूप ले चुका है। धीरज कुमार का कहना है कि यदि सरकार की इस योजना का सहयोग नहीं मिलता तो वो अपना उद्योग स्थापित करना आसान नहीं था। योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता मिली जिससे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। आज उनका उद्यम लगातार आगे बढ़ रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। धीरज का मानना है कि यदि युवा सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लेकर उनका लाभ उठाए तो वे नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार देने वाले बन सकते हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।

आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से, आइए सुनते हैं।
1: महक उठे हैं फिजा के तमाम रास्ते यूं कि जैसे आज हवाओं में कोई बात हुई है। इसी दिलकश ख्याल के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं आपकी मेजबान निकहत सिद्दीकी। कबूल करें मेरा आदाब। सामिन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं लफ्जों की खुशबू और जज्बातों की महफिल। हम डूबेंगे शायरी के उस समंदर में जहां हर लफ्ज सीधे दिल को छूते हैं। जी हां, अदब, जज्बात और यादों के खसूसी प्रोग्राम तरही शेरी नशिस्त का एहतमाम आज हमने अपने स्टूडियो में किया है। सामिन, जब भी मौसम बदलता है तो अपने साथ कई सौगातें लाता है, लेकिन एक मौसम ऐसा है जिसका इंतजार अदब की दुनिया से लेकर आम इंसान तक सबको रहता है, और वो है फलों का राजा आम का मौसम। उर्दू शायरी में आम को लेकर जो दीवानगी रही है वैसी शायद ही किसी और चीज के लिए

इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। और ये शेर भी खास तौर से मुलाजा कीजिएगा, क्या जायका था आम का लज़त जुबां पे है, क्या जायका था आम का लज़त जुबां पर है।

0: ये
1: वाह
0: मक्ता हाजिर कर रही हूँ।
1: जी, ताहो इशारा।
0: उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है ऐसा ताज,
1: उसने
0: उसने
1: मेरे भरोसे
0: मेरे
1: को तोड़ा है
0: भरोसे
1: ऐसा
0: को
1: ताज।
0: तोड़ा।

0: हे जी। बहुत शुक्रिया।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम। सामिन, इसके बाद एक और मोतबर शायर हमारे दरमियान हैं, जनाब अहमद इलाहाबादी। उनसे मैं पुरखलूस इल्तिमास करूंगी कि वो अपने कलाम से सामिन को महजूज करें।
2: अर्ज कर रहा हूँ, समाज कीजिए। लबरेज़ हो जो मैं

0: चिन्नाम भेजिए मेरी वफा का आप। शेर समाथम है, तजमीन का मिश्रा है। इस बार हो सके तो मुलाकात कीजिए,
1: इस बार हो सके तो मुलाकात कीजिए,
0: इस बार हो सके तो

0: कहने हैं भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: पैगाम भेजिए मेरी वफा का आप, खुशीन आम भेजिए। शेर समाज सुना
0: जी, इरशाद।
1: जो साथ साथ गुजरे हैं लम्हे हयात में,
0: क्या कहने हैं भाई, जो साथ साथ गुजरे हैं।

0: वही शाम भेजिए। गर हो सके तो सुबह
1: वही शाम भेजिए,
0: वही शाम भेजिए। गर हो सके तो सुबह वही

مفلس ہو یا غریب ہو یا شاہ یا غلام، مفلس ہو یا غریب ہو یا

0: इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए।
1: अपने खूबसूरत अशआर के साथ अभी हमारे दरमियान थे जनाब जलाल फूलपुरी, और इसके साथ ही ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जाने से कबल आपको बता दें उन शोहराए इकराम के अस्माए इकरामी जो इसमें शिरकत फरमा रहे थे, जनाब अहमद इलाहाबादी, मुहतरमा ताजवर सुल्ताना और जनाब जलाल फूलपुरी। और अब आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत दें अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को कुछ यूं कि अल्फाज खत्म हुए मगर जज्बात अभी बाकी है, अल्फाज खत्म हुए मगर जज्बात अभी बाकी है, मिलेंगे फिर कभी अभी कई मुलाकातें बाकी है। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू। उर्दू प्रोग्राम अभी प्रसारित किया गया आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन। सबसे पहले हम आपको अरुण गुलवाड़ी के स्वर में एलडी शर्मा का लिखा हुआ ये भजन सुनवा रहे हैं।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।

0: வைஷ்ணவி. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है. नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा.
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है. इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है.
0: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे. कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य कैबिनेट के सदस्यों और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है. राज्य के योगदान

0: को मिलाकर अगले साल मार्च तक पंचायतों के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के अंतर्गत नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। उन खनिजों में मोबिल्डेनिम, ग्रेफाइट, ग्लाइकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटैश, लिथियम, सीजियम और रूबीडियम शामिल है। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक की शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 100 अधिक अंक की वृद्धि के साथ 77,192 पर, जबकि निफ्टी 33 अंक बढ़कर 24,085 पर था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सी फेरर फर्स्ट पहल शुरू की है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। वहीं फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग।
3: दोस्तों, आपने नूपुर जोशी जी को, अभिनेत्री हैं, कई फिल्मों में आपने काम किया है, एड फिल्म्स किए हैं, थिएटर किया है, उनको आपने सुना। बहुत सारे पहलुओं पर उनकी बातें हुई हैं, हम लोगों ने जाना है, बहुत खूबसूरत से गीत सुने हैं। आज है बुधवार और देखे सवेरा कितना सुंदर है ना। तो चलिए फिर से नूपुर जोशी जी से बातचीत को जहाँ हमने थामा था वहीं से वो धागा पकड़ते हैं और फिर उस सफ़र पर निकल पड़ते हैं। तो नूपुर जी, आप कह रही थी कि जब डायलॉग डिलीवरी कर रहे होते हैं तो वो सारे भाव जो एक्टर है उसके ऊपर भी पड़ता है।
4: बिल्कुल,
3: फिर डिटैच्ड होना इतना आसान नहीं, नहीं होता है। आप घर जाते हैं, आपके घर के बिल्कुल अलग काम होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप उस कैरेक्टर में हैं और डायलॉग्स याद करने में जब दिक्कतें होती हैं, बार बार रीटेक्स होते हैं, तो डायलॉग याद करने की भी कोई कला है?
4: हाँ, मतलब

0: प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ कई बार सीनियर एक्टर्स होते हैं, कई बार आपके पास टाइम फ्रेम होता है, काफ़ी चीज़ें दाव पे होती हैं, बिना तैयारी के तो नहीं जाना चाहिए कैमरे के सामने। कई बार दिक्कत आती है, कई बार आप अटक जाते हैं किसी लाइन पे, किसी डायलॉग पे।
1: हाँ, और कई बार कैमरा देख के घबराहट सी होती है लोगों को, जैसे ही डायरेक्टर ने बोला कि यस एक्शन, तो शायद वो एक्शन होने की बजाय वो एक्शन होता ही नहीं, फिर वो कई लोग जानना चाहेंगे अगर जो ड्रामा करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उससे कैसे बाहर आए, क्या कोई
0: देखिए,
1: टिप्स
0: उसका
1: है?
0: तो सोल्यूशन यही है नेहा जी, कि तैयारी करनी है, क्योंकि वो जो डर है वो तो सबके ही होता है। वो बटरफ्लाइज जो होते हैं ना, आप चाहे जितनी तैयारी कर लें, एक दिग्गज इंसान भी होगा तो भी बिना तैयारी के अगर स्टेज पे गया है तो वो खुद ही उसको अच्छा नहीं लगेगा। मैं मानती ही नहीं बिना तैयारी के, चाहे वो कितना भी पारंगत हो, कितना दिग्गज हो, तैयारी रियाज काफ़ी ज़रूरी है। मैं बिरजू महाराज जी का एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि तैयारी तो करनी ही है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तैयारी ना करो। इसका मतलब ये नहीं है आप घंटों लगा दो तैयारी में। आपकी तैयारी आपको 5 मिनट मांगती है, आपकी तैयारी आप 5 मिनट दीजिए। आपका रियाज आपको 15 मिनट मांगता है, रियाज 5 मिनट, 15 मिनट जितना है, लेकिन वो एक नियम टूटना नहीं चाहिए।
1: यानी कैमरे का जो भय है, बहुत सारे लोगों को माइक का भय होता है, तो वो समय के साथ ही जाएगा।
2: कभी कभी डर भी अच्छा होता है क्योंकि आप तैयारी ज्यादा
0: करते
2: करते
0: हैं,
2: हैं।
0: और वो नहीं, डर नहीं होता है, वो रिस्पेक्ट फॉर द कैमरा, रिस्पेक्ट फॉर द माइक है,
1: सो गुड।
0: मंच की एक गरिमा है, तो आपको वो एक रिस्पेक्ट जो आपको जिटर्स देती है, बटरफ्लाई देती है, वो होनी ही
2: आपके
0: चाहिए।
2: काम के प्रति जो
0: बिल्कुल,
2: सम्मान
0: आपकी
2: है।
0: निष्ठा है, तभी आप तैयारी भी करेंगे।
2: नुपुर जी, आपने थिएटर भी किया, टीवी भी किया और फिल्मों में भी काम किया,
0: जी
2: तो तीनों माध्यम में आप क्या अंतर पाती हैं और आपका फेवरेट माध्यम कौन सा है?
0: देखिए, परफॉर्मेंस के मैं उल्टा चलती हूँ। परफॉर्मेंस वाइज तो मेरे लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही आप टीवी में करें, एड्स में करें, फिल्मों में करें, कहीं पे भी करें। आप ऐसा नहीं करेंगे अगर एड में कर रहा हूँ तो कम अच्छा करूँगा, या फिल्मों में कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा, या वाइस वर्सा, और एनी वे अराउंड। तो वो तो आपकी सच्चाई है आपके क्राफ्ट के प्रति, वो तो होनी ही चाहिए, चाहे माध्यम कोई भी हो। बाकी हाँ, आपका मीडियम क्योंकि फ़र्क हो जाता है, तो जैसे मैं बता रही थी, थिएटर में लाउड होना चाहिए थोड़ा, ताकि पीछे बैठा इंसान भी आपसे जुड़ पाए, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट क्रिएट होना चाहिए, तो थोड़ा लाउड रहता है परफॉर्मेंस। फिल्मी कैमरा और आपका जो सीरियल का या धारावाहिक जो कैमरा हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के कैमरा होते हैं, लेंस का फ़र्क होता है, परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क वैसे नहीं आना
2: नहीं, जैसे
0: चाहिए।
2: डेली सोप्स में क्या होता है कि आपको एक कहानी को काफ़ी लंबा खींचना होता है, तो उसमें क्या है कि रिएक्शंस ज़्यादा दिखाने होते हैं, कई क्लोज शॉट्स होते हैं, जब फिल्मों में थोड़ा
0: मैं
2: सा
0: समझ रही
2: लॉन्ग
0: हूँ आप
2: शॉट्स
0: कहाँ
2: ज़्यादा
0: जा
2: होते
0: रहे हैं।
2: हैं।
0: हाँ, वो भी है, क्योंकि देखिए, हमारी रोज़ की ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा ड्रामेटिक होती है। फिल्में हम 3 घंटे में देख करके हमको उसका क्रक्स निकाल के बाहर आना होता है, तो निचोड़ अगर आप 3 घंटे में ही देना है तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी होगी। जैसे एड्स आपके 30 सेकंड के होते हैं, तो परफॉर्मेंस उस हिसाब से होती है। धारावाहिक, क्योंकि आप रोज़मर्रा के लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो वो आपका एक चम्मच रखने का तरीका, गुस्से से रखा है मैंने या प्यार से रखा है, खिलाया है मैंने आपको या मैंने मुंह पे दे के मारा है, तो वो तो फिर उस हिसाब से ही हम थोड़ा टेम करते हैं।
2: क्योंकि कई बार मैंने भी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, शूटिंग्स देखी हैं,
0: जी
2: तो धारावाहिकों में क्या होता है कि सब कुछ हो गया, फिर उस बोले कि एक गुस्से का रिएक्शन दे दीजिए,
0: जी जी
2: एक
0: जी
2: आश्चर्य का दे दीजिए, एक बहुत घृणा वाला दे दीजिए, तो वो अचानक से निकालना, मुझे लगता है कि इसके लिए काफ़ी तैयारी, घर पे भी आप लोग आईने के सामने ऐसे खड़ी होती
0: बिल्कुल।
2: होंगी कि हाँ गुस्सा ऐसे दिखाएंगे।
0: तो आईना हमारा दोस्त बन जाता है, और तैयारी वहीं होती है, क्योंकि उस समय आपके सामने जो को एक्टर्स है वो तो होते नहीं है, तो आप माइम करते हैं और देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रॉपर अगर नहीं आता है, तो फिर जो हमारा कैप्टन ऑफ शिप, जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि, जैसे कई बार हमारे बहुत फनी इंसिडेंट है, सॉरी नेहा जी, मैं शेयर
1: हाँ
0: करना
1: हाँ प्लीज
0: चाहूंगी,
1: प्लीज।
0: हमें आंसू एक ही आंख से और एक ही बूंद चाहिए था। वो फिर आर्टिफिशियली, कई लोग जब नहीं हो पाता है तो वो भी करना पड़ता है, और कई लोग एक्चुअली एक आंख से एक आंसू एक बूंद निकाल भी देते हैं। वो होता है, वो अगेन, दैट इज ट्रेनिंग, दैट इज प्रैक्टिस, एंड दैट इज ट्रू फॉर योर रिहर्सल, फॉर योर कैरेक्टर दैट यू आर प्रिपेयरिंग।
1: जब अपने आप को आप सिल्वर स्क्रीन पे, टेलीविज़न पे, या जब आपको मोबाइल में, आजकल तो मोबाइल पे भी
0: जी
1: धारावाहिक सीरियल सब कुछ देखते हैं, अपने आप को जब आपने देखा तो कैसा लगा था कि नहीं, वो ख्वाब जो आपने बचपन से कहीं थोड़ा बहुत पल रहा था और अचानक से वो शक्ल लेने लगा?

0: लगा है,
1: जी,
0: तो कैसा लगा?
1: खुशियाँ मेरा पहला शो था जब
0: हाँ
1: उसका फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था, तो मुझे याद है दिल्ली में थी मैं उस समय कॉलेज फर्स्ट ईयर में, तो मैं, मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन, तो हम लोग सब साथ में बैठक में बैठे थे, तो मैं तो देखती छी मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, वॉज माई रिएक्शन, बट एक ड्रीम लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो जो पर्दे पे है वो शायद मैं नहीं हूँ, कोई और ही दिख रहा था, बट सबके चेहरे जब मैंने आसपास देखे तो माई फादर वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज लाइक, अरे बेटा,
0: मेरी
1: मेरी
0: बिटिया.
1: बिटिया, माई सिस्टर वॉज, शी इज 7.5 years यंगर टू मी, 7.5 साल छोटी हैं, तो शी वॉज राइट नेक्स्ट टू मी, वो बैठी नहीं थी बिल्कुल मेरे साथ चिपक के कि दीदी आ रही है टीवी पे, माता जी तो वो तो क्योंकि शूटिंग का भी पार्ट रहती थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो मुझे दौरान वो जो एक प्रोसेस चल रहा होता है ना कि वो ऐसे करो वैसे करो, और फिर कई बार टोका भी जाता था क्योंकि मेरा पहला ही शो था और कैमरे से जैसे मैं पहली बार मुखातिब हो रही थी,
0: जी.
1: तो वो तो एक हमेशा क्रिटिक की तरह मेरे साथ रही हैं, वो आज भी मुझे हमेशा बताती रहती हैं कि यू नो तुम्हें ऐसे करोगी तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, और सराहती हैं,
0: आलोचनाओं से घबराहट नहीं होती
1: बिल्कुल
0: है.
1: नहीं, और माता जी की ओर से आए तो फिर तो वो तो ब्लेसिंग हैं,
0: तो
1: माय
0: नेहा जी,
1: गॉड.
0: अभी तो बातचीत का सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन
1: जी,
0: हाँ
1: एक गाना फिर से सुनते हैं.
0: ये जवानी है दीवानी फिल्म से इस बार सुनेंगे. कौन सा
1: बिल्कुल,
0: वाला आपका फेवरेट है?
1: सारे ही मेरे फेवरेट है, बड़ा मुश्किल है,
0: हाँ
1: इस बार आपकी पसंद का सुन लेते,
0: कबीरा वाला भी सुनते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो
1: अरे
0: सुनते
1: मेरा
0: हैं.
1: भी फेवरेट. कैसे

0: अच्छा, जब आप फिल्में रिलीज हो रही हैं, धारावाहिक और कई इंटरव्यूज भी आपके छप रहे हैं, तो जो आपके बहुत नियर डियर लोग रहे हैं, जैसे कुछ सहेलियां होती हैं बचपन की, फ्रेंड्स होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता रहा है कि अरे ये वही नुपुर हैं जो मेरे साथ पढ़ी हैं?
1: तो वो तो तब होगा ना जब हम लोग आपस में रोज बात नहीं कर रहे हैं, तो रोज
0: हाँ
1: बात होती है और रोज ऐसा है कि अच्छा तुम ये कर रही हो, वो बहुत ही नॉर्मल है।
0: मतलब आप
1: मतलब
0: समय निकाल लेती रही हैं।
1: हाँ, मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड्स आज भी मैं टच में हूँ, मेरी कॉलेज के दोस्त हैं,

0: पढ़ता रहता है, टाइम तो थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाता है, जितना स्कूल में बात करते थे कॉलेज में बात करते थे उतना नहीं कर पाते, लेकिन आई एम इन कॉन्स्टेंट टच विद एवरी वन।
1: लेकिन लोग शायद ये टच, वो कहते हैं ना कि जड़ अपनी शायद कई बार व्यस्तता के कारण भूल जाते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता कि हम छूट गए हैं।
0: हाँ
1: तो वो आपके साथ नहीं हुआ, कोई ऐसा था आपको याद दिलाने वाला कि देखो जो मेन स्ट्रीम है वो सिनेमा तो है ही और जीवन का सिनेमा कुछ अलग है।
0: मैं प्रभु की कृपा जानूंगी नेहा जी। मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो मुझे आज भी ग्राउंडेड किए हुए हैं, तो मुझे ये कभी एहसास हुआ ही नहीं कि मैं अभी कहीं ऐसे कहीं पहुंच गई हूं कि मुझे नीचे उतरने की ज़रूरत है।
1: वाह,
0: वो ग्राउंडनेस, आई थिंक बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे आसपास काफ़ी लोग हैं जो मुझे हर बार हर कदम पे बनाए रखे हैं मेरे आसपास, चाहे प्यार से, चाहे समझा के, चाहे मेरे माता जी जैसे मैंने बताया, मेरे हस्बैंड हैं। तो ये एक प्यार होता है जो आपको बिखरने नहीं देता है, तो मुझे ऐसा लगता है।
1: अभय
0: और फिर
1: जी
0: इस चीज़ को ना आप जानना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है ये चीज़ें होती हैं, जानते हुए भी हम इन चीज़ों को अक्नॉलेज नहीं करते हैं। वी आर नॉट ग्रेटफुल द ग्रैटिट्यूड दैट वी मिस। तो वो चीज़ें, अगर आप भगवान है उसी के लिए है जो मान रहा है, जिसने माना ही नहीं कि है तो उसके लिए तो है ही नहीं।
1: बात मैंने नोट कर लिया है अपने दिमाग में, और वो अब मैं नहीं भूलने वाली। वो ये चीज़ कि मैं कभी उस जगह से हटी ही नहीं कि मुझे नीचे गिरने की या ऊपर चढ़ने की ज़रूरत पड़ी, कि फिसलने की ज़रूरत पड़ी। आप मेंटली हमेशा उस जगह पे रहें, शायद तभी आपकी पतंग इतनी दूर उड़ी रही है, दैट्स द रीज़न। और आप जब मिलने आई थी ऑफिस में, मैं बताऊं सुधीर श्रोताओं, हम और अभय जी तो बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गए थे कि अरे इतनी प्यारी हैं आप, तो फिटनेस वगैरह का कैसे ख्याल रखती हैं
0: नहीं जी, अभय जी वो जीन्स है,
1: आप?
0: मतलब ज़्यादा कोई मेरी उसमें मशक्कत होती नहीं है, बट हाँ मेरा रुझान जैसे मैंने बताया था योग की ओर है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर हठ योग को ज़्यादा महत्व देती हूँ। मेडिटेशन वगैरह भी मेरा रहता है पार्ट, लेकिन हठ योग ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि आसन वगैरह। तो वो ऑन एंड ऑफ तो मेरा चलता ही रहता है, योग की पढ़ाई करने के बाद वो थोड़ा रेगुलर ज़रूर हो गया है।
2: शुरुआत में जैसे आपने बताया कि आपने अभिनय से थोड़ा सा पॉज लिया कुछ समय के लिए अपनी फैमिली को।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश हो रहा है आयुष्मान।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी

0: इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
0: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कम्पेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो आपूसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलनबरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। तो पहले आज के शेष कार्यक्रम। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम होगा 9:30 बजे पूरी उड़ीसा में आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित कर्टन रेजर कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 बजे और दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी से नीति वचन। 7:31 पर विशेष कार्यक्रम होगा बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। रात

बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनवाया जाएगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल शाम 4 बजे से। रात 8:15 बजे पुरी उड़ीसा में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर डॉक्टर वेद प्रकाश यादव से की गई बातचीत सुनिएगा, ऊसर भूमि में सुधार कैसे करें। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर यशवंत कुमार की वार्ता होगी, सियाटिका में फिजियोथेरेपी से उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन होगा सुबह 7:30 बजे। पंडित अनोखे लाल का तबला वादन होगा 12:15 बजे। गौरीशंकर का क्लैरियोनेट वादन होगा 10:30 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में नमिता यादव के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे सुबह 9:50 पर। अंकिता चतुर्वेदी के गाए भजन और गीत सुनिए शाम 7:45 पर। फूलचंद्र यादव और साथी, मुंशी राम बहादुर और साथी, कुंवर सिंह और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 10:30 बजे। बोलते नगमे, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दिन में 11:30 बजे। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में 12:30 बजे। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा पनघट, इसमें बहनें सुनेंगी उषा बाला से की गई बातचीत, सिलाई कढ़ाई के हुनर से आत्मनिर्भरता। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 बजे होगा। पंचायत घर कार्यक्रम शाम 6:30 बजे, जिसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे मेरी खेती मेरी बात के अंतर्गत ज्ञान सिंह पटेल और हिंचलाल पटेल से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। शाम 7:31 पर प्रियंका द्विवेदी की कहानी सुनवाई जाएगी। गजलों पर आधारित कहकशां कार्यक्रम का प्रसारण होगा 9:30 बजे। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देश का अन्य संवेद स्वरों में।

फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: रक्तदान तकलीफ देह नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें, रक्तदान महादान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहन भैया। देखा आज के जो किसान भैया है ना, वो मौसम की जानकारी अपने मोबाइल से लेते हैं।
1: सही बात
0: हाँ,
1: बटे।
0: सब जगह आधुनिकीकरण हो गया है और तकनीकी से ही जो तकनीकी के प्रयोग होते हैं, उपयोग होते हैं, वही से आगे विकास हो सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: अगर
1: बिल्कुल
0: विकास के दौड़ में साथे चले के हैं, विकास के दौड़ में आगे बढ़े के हैं, तो जौन भी हमारे देश के युवा हैं, विश्व के युवा हैं, उनका कौशल के विकास करे के। यही तरह कोनो भी दिवस होते हैं, दिन होते हैं भैया, ओके मनावे के तो यही उद्देश्य होते हैं कि ओकरे प्रति हम सभी जागरूक होई।
1: बिल्कुल सही कहे आप। विज्ञान में देखा जाए, तकनीक में देखा जाए, विकास में देखा जाए, औद्योगिक विकास के रूप में देखा जाए, तो युवा लोगों की भागीदारी ज़्यादा है। देखा जौन कंप्यूटर वाली बात अगर आई बाटे, आजकल नई नई तकनीक आ गई बाटे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी चल रहा
0: बिल्कुल
1: बाटे,
0: बिल्कुल
1: तो देखा
0: भैया,
1: युवा कौशल कितना बढ़िया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जौन विद्यालय हैं उनमें क्लास भी चलत है, जौन अस्पताल हैं उनमें
0: इलाज
1: बढ़िया
0: चलत
1: चिकित्सा
0: है,
1: सुविधा भी चलत है,
0: बिल्कुल
1: और तो और अब तो ड्राइवर रहित जौन गाड़ी भी आ गई बाटे, ड्राइवर रहित पायलट रहित जौन है विमान भी चल रहा बाटे,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: ये
0: भैया,
1: युवा कौशल का ही देन है एक तरह से।
0: बिल्कुल सही कहन भैया। और हम सब तो देखा खेती किसानी के काम करी थी, और जौन भी अपने खेती किसानी से जुड़े युवा हैं, वो चाहे कौनो तरह के फसल होए, ओमा कहूँ ना कहूँ तकनीकी के उपयोग करत हैं, और उनसे जुड़े जौन भी अनाज उत्पन्न होते ना, ओकर जौन महानता होती, वो कहे कि कोनो बात नहीं, कहे कि ओमा जोन तकनीकी के इस्तेमाल हो जाते हैं, उसे उनका व्यवसाय भी बढ़ जाते हैं।
1: सही बात है राधा बहनी। देखा मौसम के अनुकूल बनावे के खातिर भी
0: बिल्कुल
1: युवा युवा जोन कौशल है ना बड़ा काम करत है, क्योंकि खेती किसानी का काम मौसम पर आश्रित है,
0: बिल्कुल
1: चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे दुनिया के कोनों भी कोना में हो, अगर मौसम जैसन है वही के मुताबिक फसल भी उगे थे। जहाँ ज़्यादा गर्मी है तो ये युवा कौशल के कारण से तमाम तरह के अनुसंधान करके वैज्ञानिक हरे भैया लोग कृत्रिम वर्षा कह देते हैं, है ना, आभास
0: बिल्कुल
1: कृत्रिम वर्षा कह के मौसम के ठीक करते हैं और जो है फसल भी होते हैं। अगर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो युवा कौशल के कारण ही तरह तरह का जो प्रजाति आ गई बाटे हैं
0: बिल्कुल
1: कि
0: भैया,
1: अपने ये तरफ के मतलब जो गर्मी वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी सेब पैदा होते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
1: और जौन है ऊंचाई वाले बर्फ़ वाले जौन क्षेत्र हैं वहाँ धान पैदा होते हैं। तो युवा कौशल का ही विशेषता है कि विपरीत स्थिति के भी मनोनुकूल बनाए के खेती किसानी में लग के लगाए के वो तरह के काम होते हैं, क्योंकि युवा कृषि वैज्ञानिक हरे भैया इतना अनुसंधान पर समय दे रहा बाटे कि जौन ऐसा उन्नतशील ढंग का विकसित प्रजाति जौन आ गई बाटे फसल का, वो
0: बिल्कुल
1: भैया रोग रोधी भी होते हैं, कम समय में तैयार होते हैं, और पैदावार भी कई गुना ज़्यादा कह दिए हैं, जौने से कम उनकर जौन योगदान है बढ़ती जनसंख्या पर ओके खाद्यान्न के समस्या के वो दूर करते हैं। तो युवा कौशल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बाटे, और आज के दिन चूंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व स्तर पर एक मना रहा बाटे,
0: बिल्कुल भैया,
1: तो आज के दिन यही पंचायती में हमारे सभी सब युवा भाइयों से ये आह्वान किया जाता है कि देश के प्रगति के खातिर वो आगे आवें, और देश के आर्थिक प्रगति में, देश के सामाजिक प्रगति में, देश के राष्ट्रीय प्रगति में अपन योगदान दें।
0: बिल्कुल सही कहन भैया। देखा जौन भी युवा हैं, जौन भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे वो किसान हों और चाहे नए कौशल से, नई तकनीकी से जुड़ा हों,
1: जी
0: आधुनिकता से जुड़े हैं, अगर वो अपन कौशल के विकास करिए तो कौशल से ही सफलता की नई कुंजी खुलत भैया।
1: सही बात है राधा
0: और
1: बहनी।
0: देखा कौशल खेती की मजबूत करत है, उसे अपन किसान भैया के जौन जीवन है वो समृद्ध हुई, और हमार गाँव देश भी समृद्ध हो जाए भैया।
1: हाँ, तो कम से कम लागत लगे, जैसे देखा कृषि विविधीकरण वाला जो रूप है
0: हाँ
1: वो जाना कि एक तरह से व्यावसायिक कौशल ही है। हाँ, खेती किसानी के अलावा चूंकि परंपरागत खेती किसानी है, ओकरे अलावा मौन पालन या मधुमक्खी पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, सुकर पालन होता है, मछली पालन होता है, ये तरह का कृषि आधारित ही हमारे सभी और अर्थव्यवस्था के लिए के उद्यम लिया के 4 पैसा कमाया जा सकत है। विशेषकर अब तो पशुपालन पर अपन केंद्र सरकार, अपन राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही बाटे, सरकार से कुछ न कुछ अनुदान भी मिलत है, तो अपन जो

0: पंचो राम राम। कहो राम अवतार भैया, का हाल चाल बा?
1: राधा बहनी देखा, हाल चाल तो ठीक है बटे। मिला आज के दिन देखा एक विशेष दिन है। आज के दिन विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनावा जाता है।
0: भैया
1: ये जाना कि ये दिन विशेष ये खातिर बाटे कि संयुक्त राष्ट्र सन 2014 में एक विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में शुरू की है बाटे। एकर मूल उद्देश्य जौन है युवाओं के खातिर रोजगार, सम्मानजनक कार्य, उद्यमिता के तमाम अवसर, आवश्यक तकनीक, व्यावसायिक कौशल कैसे उकर जौन महत्व हो के कैसे उजागर किया जाए। तो 15 जुलाई के दिन ये विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनावा जाते हैं।

0: खेती किसानी में है, जैसे हरा चारा की व्यवस्था तो पशुपालन के मिल जाते हैं, एक तरह से एक दूसरे पर आश्रित जन व्यवस्था है,
1: बिल्कुल भैया,
0: उनमें अपन युवा भाई आगे आवत हैं और नई नई तकनीक दे के, नए नया प्रयोग करके अपने देश के आगे बढ़ावत हैं।
1: बिल्कुल भैया, युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो जौन भी हमार युवा पंच भैया रहे, किसान भैया रहे सुनत हुई हैं, तो अपन कौशल के आगे बढ़िए जैसे अपन देश भी आगे बढ़ सके। लेकिन भैया एक बात हम और करे चाहब, आज के चर्चा में बहुत जरूरी है, वो है वृक्षारोपण।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा बहनी। देखा अब तो सामने आ रहा बाट, बरखा का दिन अबहिन बढ़िया आए नहीं बाटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: धान हमारे सभी लगा के फुर्सत हो गए हैं, मुला दौ राजा अबहिन बढ़िया से देख नहीं रहा बाट। तो कहीं न कहीं ये तरह के असंतुलन का कारण जौन है अंधाधुंध वृक्षण का कटाव ही है।
1: बिल्कुल भैया,
0: और जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही बाटे कि देखा न, अब सावन आवे वाला है 10 दिना में, और तापमान कितना भाग रहा बाटे, कहीं से कमी नजर नहीं आ रही बाटे। तो तापमान का जौन असंतुलन है, जौन पर्यावरण का असंतुलन है, ये अंधाधुंध वृक्षण के कटाई के कारण ही है।
1: भैया जौन है उनका संभाले के, उनका संरक्षित करे के अपने सभी के जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: तो सही, जिम्मेदारी में सबसे पहले तो ये करें कि भैया पंच भैया जौन भी आपन सभी के खेत हुए, हर खेत के मेड़ पर एक पेड़ जरूर लगाएं।
0: बिल्कुल सही कहते हैं, अब अपन सरकार भी कह दिए बाटे कि एक पेड़ माँ के नाम।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
0: तो कहे का मतलब कि जौन प्राणदायिनी वायु है ऑक्सीजन, ओकर भी गुणवत्ता महत्ता उपलब्धता बनी रहे वातावरण में, वातावरण ठीक रहे शुद्ध रहे। और अब सरकार भी में बहुत तेजी से काम कर रही बाटे सामाजिक वानिकी के रूप में, हर किसान भाई के, हर भैया बहनी के चाहे कि वृक्ष लगावे। वृक्ष लगावे के वृक्षारोपण का ही सबसे उचित समय बरसात है, गड्ढा खोद लिया जाए और संबंधित वन विभाग में जाके आपके चाहे शोभाकार वृक्ष चाहे, चाहे लकड़ी की खातिर चाहे, चाहे फलदार वृक्ष चाहे, चाहे छायाकार वृक्ष चाहे, जौन भी आपके पौधन का आवश्यकता है निःशुल्क मिलत है, आप ले आ के वृक्षारोपण करें। हाँ, जरूरत ये बात का है कि महीना दो महीना ओके सुरक्षित और संरक्षित करे का जरूरत है, नहीं तो छुट्टा पशु कहीं कहीं ओके नुकसान पहुँचाते हैं, पौधा नष्ट हो जाता है। जरूरत ये बात का है कि ओके ईंटा से या लकड़ी से कहीं से घेरा बनावा जाए, नियमित पानी का व्यवस्था की जाए, जौने से कि उनकर बढ़वार बढ़िया हो जाए। कुछ ही दिना का बात है, अगर बढ़ जाइए तो फिर कोनो उनके नुकसान नहीं।
1: भाई जैसे अपन खेत के रखवाली कीन जाते हैं, देखभाल कीन जाते हैं, वैसे वृक्षारोपण करें और जौन भी पौधा लगाएं, कहे का मतलब यह है कि ओका देख रेख भी उचित करत रहें, उन्हें पानी देत रहें। तो भैया
0: हाँ,
1: देखा अपनी पंचायती तो तब तक न सजी जब तक गमना ही न हो।
0: समझ गए तो हर बात। तो आज अपने पंचायती में देखा, चूंकि खरीफ का समय है ना, तो छिटकवा विधि से धान की रोपाई कैसे की जाए, एक बारे में बहुत विशेषज्ञ भैया आए रहे हैं, बहुत जानकार डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, उनकर बात बात कही सुनी जाए। आज नीति वचन का दिन बाटे तो डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी से वो सुना जाए। लेकिन जो आप बतायु है ना कि परंपरा बाट है कि किसान भयन के स्वागत में कुछ ढोल मजीरा बाजत है,
1: हाँ हाँ,
0: तो कमला प्रसाद और संघाती का गावा विकास गीत है, आवा किसान भाइयों के साथ हमारे सभी सुन लेंगे।
1: सुनवाए दे भैया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग

0: 2,00,000 रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ, देखा हो राधा बहनी।
4: हाँ,
3: लोकगीत रही कमला प्रसाद और संघातिन का, भैया विकास गीत रहा धन धन धरती के लाल हो किसनवा,
4: साथ ही साथ संदेशों सुनाएगा। हाँ। और भैया देखा आज बुधवार के दिन बाटे तो नीति वचन के दिन होते हैं, तो डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी से आवा नीति वचन सुना जाए और पंच भैया भी सुने।
3: सुनवा दो।
5: नीति वचन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर आज की हमारी परिचर्चा है। समाज नीति वाक्यों, नीति वचनों, नीति के सिद्धांतों से भटक सा गया है, जिसके भयावह परिणाम हमारे आपके सामने हैं। आज समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो अंतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका मूल कारण यही है कि हम अपने नैतिक सिद्धांतों से भटक गए हैं। नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि हम किस समय किस प्रकार का आचरण करें, समाज निर्माण में एक व्यक्ति के रूप में हमारी क्या भूमिका होगी, ये नीतियां हमें संदर्भित करती हैं। आज के समाज में न केवल भारतीय समाज वरन पूरे विश्व में नीतियों पर एक काई जम जाने के कारण समाज में अनाचार, व्यभिचार, पापाचार जैसे विभिन्न उपादान स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं। आज का हमारा युवा दिग्भ्रमित हो गया है। उसे सही मार्ग पर लाने के लिए हमें नूतन के प्रति आग्रह और पुरातन के प्रति समन्वय का भाव धारित कराना होगा। समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी युवा पीढ़ी को अपनी पुरातन संस्कृति के साथ जोड़ते हुए नवीन ज्ञान सीखने का मंच प्रदान करे, अवसर प्रदान करे। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वैदिक वाङ्मय में नीतियों का भंडार है। हमारे संस्कृत ग्रंथों में भी नीतियां विपुल भंडार के रूप में भरी हुई हैं। जैसे हमारा एक नीति का वाक्य है, तैत्तरीय उपनिषद का हमारा ये वाक्य है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। वो कौन सी परिस्थितियां हमारे इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों में समाहित हो गई हैं जो हमें इस ओर उन्मुख कर रही हैं कि हम पिता को पिता नहीं मान पा रहे हैं। जो हमारा जनक है, जो हमारा पोषक है, जो हमारा पालक है और समाज में सर्वोच्च हितकर्ता हमारा माता पिता हैं, उनकी ओर हमारी दृष्टि, हमारा चिंतन बदल सा गया है। एक क्षुद्र स्वार्थ के लिए विसंगतियों, कुसंगतियों के प्रभाव के कारण और नीति वचनों के ह्रास के कारण हमारा युवा अपने पथ से भटक गया है। इसीलिए तो हमारी नीति कहती है, हमारे मनीषी कहते हैं, हमारे वेत्ता कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे समाज के सुधी जन कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं कि हमें माता और पिता को प्रणाम करना चाहिए। एक तरफ ये हमारा तैत्तरीय उपनिषद है जो ये कहता है मातृदेव भव, दूसरी तरफ हमारा एक लोक ग्रंथ है जो लोक भाषा में कालजयी रचना के रूप में सरल भाषा में हम सबके सामने है, रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने उसमें चौपाई लिखी, प्रात काल उठिके रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा। ये तैत्तरीय उपनिषद का हिंदी रूपांतर हो गया। समाज को प्रेरित करने के लिए, समाज के युवाओं को एक सुपथ देने के लिए तुलसी बाबा ने यह रचना की कि प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु के चरणों में हम सादर प्रणाम करें। परिणाम क्या होगा? हम में सकारात्मकता उत्पन्न होगी, हम में रचना धर्मिता उत्पन्न होगी और जब सकारात्मकता और रचना धर्मिता होगी तो हमारी कर्मेंद्रियां और हमारी ज्ञानेंद्रियां तदनुकूल आचरण करेंगी। आज हम अपने इन सिद्धांतों से भटक गए हैं जिसके कारण हमारा समाज गहरे से प्रभावित हो रहा है। वो समय था जब हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हमारे बड़े हमको सिखाते थे किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है और क्या अनुचित है। आप विचार करें कि कोयल का बच्चा और कौवे का बच्चा काला ही होता है, दोनों को एक साथ

रखा जाए, जब तक उनके गुणों को आप नहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, तब तक आप उनका भेद नहीं कर सकते। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत ऋतु में जब कोयल कूक करती है और कौवा काव काव करता है तो हमें दोनों के गुणों का अंतर्ज्ञात हो जाता है। ये नीतियां और ये नीति के वाक्य हमें यही बताते हैं कि कब क्या उचित है और क्या अनुचित है। निश्चित रूप से नीति के वाक्य हमारी दिशा, हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। चुनौतियों से हमें लड़ना सिखाते हैं, एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाते हैं कि हम स्वयं कैसे जिम्मेदार नागरिक हों और दूसरों को कैसे जिम्मेदार नागरिक बनाएं। आज के समाज में आप देख रहे हैं हमारे नए नए टीन एजर्स, युवक और युवतियां परस्पर छद्म छलावे के बीच फंसकर घर का त्याग कर रहे हैं, माता पिता का त्याग कर रहे हैं, परस्पर प्रेम की कथित परिभाषा के कारण घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। आप देखें हमारे रामचरितमानस में एक अवसर है जब जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी अपनी माता की आज्ञा पाकर गिरजा के पूजन के लिए बाग में जाती हैं और वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उपस्थित हैं। दोनों एक दूसरे का अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, पर स्थिति क्या वहां उत्पन्न होती है? जगत जननी जगदम्बा जानकी के लिए सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पटतरों विदेह कुमारी, यानी अद्वितीय सुंदरी है जगत जननी, पर रघुकुल शिरोमणि राम उनके सौंदर्य से विचलित नहीं होते। वे अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अपने हृदय में विचार करते हैं, हे भाई, एक सुंदर कन्या को देखने पर एक रघुवंशी का धर्म नहीं, एक धर्मी का यह चरित्र नहीं कि वह उसकी ओर आकर्षित हो जाए। अपने चरित्र का पालन करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं और गुरु की आज्ञा मानकर पुष्प को लेकर गुरु की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर माँ सीता, जगत जननी सीता क्या करती हैं? स्वयंवर है, स्वयंवर चुनने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ है उनके पिता के प्रण में, पर वे भी विचलित नहीं होती, बल्कि माँ गिरजा के चरणों में जाकर निवेदन करती हैं, अपने कुल की मर्यादा का त्याग नहीं करती, अपने माता पिता के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाती, बल्कि अंतर मन में वे राम को पति के रूप में प्राप्त तो करना चाहती हैं पर इसका उद्घाटन नहीं करती। मर्यादा का पालन करने के लिए वे अपने घर लौटती हैं और अपनी माता के समक्ष जाकर गिरजा पूजन की बात को स्पष्ट करती हैं। उनकी माता भी, उनके पिता भी अपने प्रण के बीच उन्हें यह अनुमति नहीं प्रदान करते और उस अनुमति न प्रदान करने को सीता सहज स्वीकार करती हैं। इससे हमारे युवाओं को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी संस्कृति में माता पिता जैसा दूसरा कोई हितैषी न हुआ है न आगे होने वाला है। भविष्य को संवारने के लिए, भविष्य को सुघड़ बनाने के लिए हमें समाज में अपने इन नियमों को, इन विधानों को जो हमारे पुरखे हमें परोस कर चले गए उन्हें देखना ही होगा। सज्जनों, हमें समाज के उन आदर्श नियमों पर हमेशा आगे बढ़ना होगा, तभी हम में धैर्य होगा, तभी हम में साहस होगा। हमारे जीवन के जो 10 मूल्य हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के जो लक्षण हैं। अब आज का युवा देख ले, टेलीविजन पर कभी फ्रेश हो तो आप देख लीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी के ऊपर लिखा है, यतो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म नहीं है, सदाचरण नहीं है तो जय नहीं हो सकती। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी हमें अपने जीवन को नीति वाक्यों के सापेक्ष, नीति का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए, वर्तमान युग के सापेक्ष जोड़कर ज्ञान को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा समाज सुघड़ होगा, सुंदर होगा और हम एक जिम्मेदार नागरिक हो सकेंगे।

0: हाँ देखा हो राधा बहनी,
1: हाँ
0: बहुत
1: भैया,
0: बढ़िया नीति वचन रहा डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी का। हमने सभी जरूर ऐसे लाभ उठावा जाए इनके बात बत कही से।
1: हाँ
0: हम कहें
1: भैया,
0: कि देखा अपन सरकार एक नए ढंग

0: उत्तर प्रदेश कृषक पंजीकरण चला रही बाटे। 30 अप्रैल 2026 से लगायत 15 मई तक ही रहा, लेकिन एक समयावधि बढ़ा दी गई।
1: अच्छा भैया,
0: देखा बहनी आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, खतौनी, ये सब जरूरी है। हर किसान भाइयों से ये अरदास है कि जरूर पंजीकरण करावें। एक फायदा ये है कि जौन भी सरकार से अनुदानित राशि मिली, फसल बीमा, फसल खरीद और जितनी भी कृषि से संबंधित सुविधाएं हैं, जितना भी अनुदान है, जौन भी योजनाएं हैं, उनके प्राप्ति के कारण किसान भाइयों के कृषि पंजीकरण जरूरी है। सबसे ही निवेदन है कि जाके अगर ना समझ में आवत है तो अपने ब्लॉक पर जाके समझ के अपन कृषक पंजीकरण जरूर करा लें। नहीं तो जौन क्षेत्र लेखपाल है ओकर जिम्मेवारी है, ग्राम सचिव है ओकर जिम्मेवारी है कि जरूर कृषक पंजीकरण कराए।
1: तो जौन भी किसान भैया लोग अब तक नहीं कराए हुए कृषक पंजीकरण, वो जाए के जल्दी से कराए लें। बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: अब देखा एक बात है ना कि खरीफ का जौन सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान।
1: हाँ।
0: धान के तमाम तरह की पद्धति, तमाम तरह की विधि से कहीं छिटकवा है, कहीं रोपाई है, है ना,
1: बिल्कुल,
0: कहीं नर्सरी पहले कहके तो फिर जाके दूसरी जगह लगावा जाते। लेकिन छिटकवा विधि से धान का रोपाई कैसे की जाए, एकरे विषय में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अपने रितेश कुमार शुक्ला बात बत कह किए हैं। हम कहें अवा किसान भाइयों के साथ हमारे सुबह सुना जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाए दे भैया।
2: किसान भाई बहुत स्वागत बा आपका अपने पंचायती में। आज अपने पंचायती में एक विशेष भेंट वार्ता बाटे जेमन डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया आवा हैं, जेकि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी से हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत बा आपका। डॉक्टर साहब ये जोन मौसम चलत बाटे, ये खरीफ का जोन राजा फसल बाटे यानी कि धान जोन बाटे ओकर मौसम चलत बाटे। और भैया देखा डॉक्टर साहब हमरे यहाँ तो भैया देखा अलग अलग किसान भाई अरे अलग अलग तरीका अपनावत हैं, और जोन उनके पास जोनों जानकारी हो तो चाहे वो पुरखा पुरनिया से हो चाहे वो वैज्ञानिक भैया के द्वारा हो, अलग अलग तरीके से भाई धान की बुवाई होता, अलग अलग किस्म होता, ओकर अलग अलग रख रखाव होता, अलग अलग तरीका होता। तो जोन भी तरीका होता भाई सबका कुछ नफा होता, कुछ नुकसान होता, कुछ फायदा होता। तो अलग अलग तरीके में भैया कुछ विशेष जैसे छिटकावा विधि बाटे, ये छिटकावा विधि का बाटे और इका एक बारे में कुछ आप बतावें किसान भाई इनके।
3: देखिए जैसा किसान भाई आप सब जानते हैं कि हमारी धान की जो फसल है वो खरीफ में मुख्य फसल है और किसान भाई इसकी तैयारी में बड़े मई माह से ही लग जाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: जिनको किसानों को रोपाई करनी होती है वो मई माह में अपनी नर्सरी डाल देते हैं, लेकिन नर्सरी डालकर रोपाई कराना इस समय बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो गया है, क्योंकि लेबर की उपलब्धता कम होने लगी है, लेबर समय से नहीं मिल पाते हैं, और इसमें इसके साथ साथ लेबर की उपलब्धता के साथ साथ इनका धन भी ज़्यादा लगता है उसकी रोपाई करवाने में, लागत ज़्यादा हो जाती है, और उत्पादन जब होता है तो लागत अगर हम ज़्यादा लगा देते हैं तो हमारा जो उससे कोई फ़ायदा है वो नहीं हो पाता है। तो देखिए ये जो धान की रोपाई का प्रचलन है ये हमारे देश में अभी 80-90 सालों से आया है, उससे पहले जो है हमारे जो पूर्वज थे वो सीधे धान की छिटकों विधि से बुआई करते थे
2: जी, जी।
3: और धान हमारा जो धान का पौधा है वो बना भी हमारी छिटकों विधि से फसल की बुआई के लिए, लेकिन हमने उसमें कुछ खरपतवारों की समस्या ज़्यादा आती थी उसकी वजह से उसको छोड़ा, और रोपाई करने में हम पहले अपना धान की पौध तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद उसकी रोपाई कर देते हैं, लेकिन छिटकुआ विधि जो हमारे पूर्वज करते थे वो कम लागत में अधिक उत्पादन लेते थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो डॉक्टर साहब संसाधन भी कम रहा और छिटकुआ विधि जोन होत रही कि भाई उमन जोन आपका मेहनत रही वह कम लगत रही
3: जी।
2: तो जोन छोड़े के का कारण रहा कि भाई छिटकुआ विधि छोड़ के किसान भाई रोपाई विधि पे आई गए ने, एक बारे में बताऊँ आपके काहे छोड़ दिए ने का।
3: देखिए जब छिटकुआ विधि से बोते थे तो उनका जो है बुआई से कुछ जो नुकसान होता था, चिड़िया दाने को चुक जाती थी बीज को, उससे नुकसान होता था, फिर जो बीज हमारा ऊपर पड़ा रहता था वो जो है सड़ जाता था, और एक निश्चित गहराई तक अगर हमारी फसल की जड़ें नहीं गई तो हम उससे उत्पादन अच्छा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए और इसके साथ साथ खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, जब घन पौधे निकलते थे तो उसमें हवा पानी प्रकाश पर्याप्त मात्रा से नहीं मिलता था, उसकी वजह से खरपतवार सबसे पहले तैयार हो जाते थे और खरपतवार वो हमारे जो फसल की पौधा है उसको दाब लेते थे, जिससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता था और रोग बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता था।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: इस वजह से छिटकुआ विधि को किसानों ने छोड़ा, लेकिन अब हमारे बीच में बहुत सी विधियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि हम अगर सीधी बुवाई की बात करते हैं तो सीधी

0: में दो तरीके से हम बुवाई कर सकते हैं, उसमें हमको श्रम भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और पौधों का विकास भी अच्छा होगा।
1: बिल्कुल
0: तो इसमें कुछ यंत्र भी आ गए हैं, जैसे आपका धान की बुवाई के लिए सीड ड्रिल आ गई है,
1: अच्छा।
0: उसमें खाद और एक खाने में खाद भर दी जाती है, एक में बीज भर दिया जाता है, दोनों एक साथ जो है खेत तैयार करके बो सकते हैं। इसमें दो विधियां भी हैं, जैसे कि गीली विधि से, मतलब या तो ड्राई ड्राई में हम बुवाई करना चाहते हैं सीधी बुवाई, या वेट में करना चाहते हैं, तो दोनों विधियों को हम अपना के उसका लाभ ले सकते हैं और कम पैसे में।
1: डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जो नवा अनुसंधान भवा नई जो जानकारी आई गई बाटे, तो अगर सीधी बुवाई अब की जाए तो किसान भाई ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
0: जी
1: एक बात आप ही बताएं कि अगर मशीन द्वारा एकर बुवाई होए तो भाई बुवाई अच्छे से हो जाए और किसान भाइयों के अच्छी फसल मिले। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बतावें कि अगर यंत्र के अलावा या जोन मशीन बाटे ओकरे अलावा अगर आदमी खुद से अगर एकर बुवाई करा चाहे तो वो कैसे करें, एकरे बारे में आप बतावें।
0: देखिए, बैल, पहले हमारे पास बैल पर्याप्त मात्रा में थे, तो किसान भाई जो हमारे जो किसान थे वो कुंड में बुआई करते थे,
1: अच्छा
0: नीचे खाद डालते
1: बिल्कुल
0: थे और ऊपर बीज डालते, एक आदमी खाद डालता चला जाता था और दूसरा आदमी बीज डालता चला जाता था, तो उस लाइन में
1: जो हल रहत रहा, हल में बना रहत रहा, वही
0: चोंगा।
1: उन्हीं जो
0: जी
1: जी
0: जी
1: उन्हीं में डालत रहे तो उसके साथ भी उमन का नाम बा, एक तरफ से आपका खाद पड़त रही और एक तरफ से बीज पड़त रहा।
0: जी
1: जी
0: उसका एक तो सबसे बड़ा फायदा ये था कि नीचे खाद और ऊपर बीज रहता था,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: जब नीचे खाद और ऊपर बीज रहता था तो खाद की पूरी पोषक तत्व की मात्रा लेकर बीज हमारा अंकुरित होता था और पौधा स्वस्थ होता था।
1: बिल्कुल
0: लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ पर खरपतवारों की समस्या, सबसे पहले खरपतवार तन के खड़े हो जाते थे, वो नुकसान ज़्यादा था। लेकिन अगर हमारे पास यंत्र नहीं है, हम बुवाई करना चाहते हैं, तो बैल अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो चोंगे के सहायता से हम नीचे खाद और ऊपर बीज की बुवाई कर सकते हैं।
1: हाँ
0: और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हमको बीज की मात्रा भी कम लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक एकड़ में हमारा 8 से 10 किलोग्राम बीज लगेगा, और जबकि हम अगर रोपाई की बात करते हैं, रोपाई के लिए पौध तैयार करते हैं, तो 1 बीघे में हमारा हाइब्रिड है तो वो 3 केजी है, और नहीं तो अगर वाले जो देसी बीज है हमारे, वो कम से कम 10 किलो के आसपास हमको डालने पड़ते हैं।
1: तो कुल मिलाए के डॉक्टर साहब, अगर छिड़कावा विधि के नियंत्रित ढंग से अगर किया जाए, अगर नियंत्रण में हो के किया जाए तो निश्चित तौर पर जोन आप बताएं कि भाई लागत तो कम लगे, साथ ही साथ जोन बीज का मात्रा रहे वो कम लगे और जोन हमारा उत्पादन होए
0: जी
1: वो आपके रोपाई
0: बढ़ेगा।
1: के माध्यम से ज़्यादा होए, अगर
0: जी
1: रोपाई से किया
0: जी
1: जाए
0: जी
1: तो तुलना में ज़्यादा होए। तो डॉक्टर साहब ये तो बात भाई कि भाई दोनों विधि काहे एक दूसरे से अलग बाटे, ई जोन चीज बाटे खरपतवार की जोन समस्या आवत है, हम आपसे यह जानना चाहब कि भाई खरपतवार के अगर बुवाई के पहले कोनो ऐसा चीज की जाए कि खरपतवार ना आवे, जैसे कुछ किसान भाई का करते हैं कि भाई आपके का नाम भाई एक जोत लगाई के पानी भर देते हैं उमन, और जब मिट्टी आपके सूख जाता, सूख कायदे से जब आपका खेत सूख जाता तो भाई जो खरपतवार की समस्या आवे वाली रहता वो कम हो जाता। तो
0: जी
1: कोनो ऐसा चीज आप विधि हो या यही विधि बाटे या एकरे अलावा कोनो विधि बाटे ये बताओ आप।
0: देखिए, अगर धान की बुआई हम सीधी वेट उसमें करते हैं, गीली अवस्था में करते हैं, तो वहां पर हम खेत को बहुत अच्छी तरीके से पहले तैयार कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: तैयार करने के बाद जैसे ही हम खेत को तैयार करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पीछे सीजन के खरपतवार के बीज होते हैं, वो सबसे पहले वो तैयार हो जाते हैं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: खरपतवार आ जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: उसके बाद जब हम दूसरी जुताई करते हैं, तो उसके बाद जब दूसरी जुताई करके पलेवा लगा देते हैं, तो हमारे खरपतवार वहाँ पे नष्ट हो
1: नष्ट
0: जाते
1: हो
0: हैं।
1: जाते हैं
0: दूसरा, अगर हम सीधी बुआई कर रहे हैं, उसमें कोई खरपतवार नाशी प्रयोग करना है, तो बुआई के हमको 48 से 72 घंटे के अंदर पेंडामेथिलीन नामक दवा है, 30 cc की दवा है, उसका अगर हम छिड़काव खरपतवार से, हम बहुत हद तक सीधी बुआई में, बुआई के तुरंत
1: अड़तालीस
0: अड़तालीस से
1: घंटे के
0: बहत्तर 48 से 72 घंटे के अंदर।
1: बिल्कुल बिल्कुल तो डॉक्टर साहब ये मतलब कि जो समय बाटे ये बहुत महत्वपूर्ण समय बाटे, ये अगर किसान भाई सीधी बुआई करत हैं
0: जी
1: तो जो ना आप बताएं कि 72 घंटे के अंदर अंदर भैया अगर दवा का छिड़काव कर ही तो निश्चित तौर पर जो नहीं खरपतवार की समस्या होता भाई ऐसे बच सकते
0: उससे
1: हैं।
0: बच सकते हैं। जी
1: बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि सीधी बुआई जो आप बताएं तो सीधी बुआई के लिए कोनो विशेष तैयारी की जरूरत होता, कि जैसे अपन खेत की तैयारी पहले रोपाई के लिए होत रही वही खेत में आप सीधी बुआई कर सकते हैं कि कुछ विशेष आपके काम करे के पड़े।
0: देखिए, सीधी बुआई में हमको विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, हमको नर्सरी नहीं डालने की आवश्यकता है, जो हम मई माह में डालते हैं वहाँ, उससे हमारी बचत हो सकती है। उसके बाद सीधे हमको खेत तैयार करके दो विधियों से, या तो गीली विधि से या सूखी विधि से, अगर हम

0: सूखी विधि से करना है तो हमको खेत की अच्छी तरह कल्टीवेटर्स की सहायता से जोत कर उसको जो है बढ़िया से तैयार कर लेना है, खेत में समतल कर लेना है। समतलीकरण तो हमारी सीधी बुआई जो छिटकवा विधि से बुआई है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीजों का जमाव होगा।
1: हम आपसे एक बार और जानना चाहब डॉक्टर साहब, जो ना आप यंत्र के बारे में बतावत रहें कि भाई एक यंत्र होता उससे सीधी बुआई होता, ओकरे बारे में रच के और थोड़ा विस्तृत रूप से बतावे, कैसन यंत्र होता, कहाँ मिले और कैसे किसान भाई इसे लाभ ले सकते हैं।
0: देखिए किसान भाइयों को दो यंत्र इसमें सीधी बुआई के लिए मिल सकते हैं। एक तो सीड ड्रिल होती है,
1: जी
0: सीड
1: जी
0: ड्रिल जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो सीड ड्रिल पे अनुदान भी देती है, वो ट्रैक्टर
1: अच्छा
0: चालित है।
1: अच्छा
0: दूसरा एक ड्रम सीडर है। ड्रम सीडर एक पूरा 8 किलो का हमारा वजन का होता है, प्लास्टिक का होता है, उसमें बॉक्स होते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: 8 बॉक्स होते हैं,
1: जी
0: उनमें
1: जी
0: हम
1: जी
0: बीज भर देते हैं
1: अच्छा
0: और एक आदमी उसको बड़े आसानी से विपरीत दिशा में खींचते हुए चला सकता है और सीधे उस लाइन में बुआई उससे हो सकती है। तो
1: बिल्कुल
0: दोनों
1: बिल्कुल
0: यंत्रों पर राज्य सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान को लेकर किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं। और बीज की जहां तक बात है तो बीज हमारा जो है 8 से 10 किलो 1 एकड़ में लगता है, और जबकि अगर हम रोपाई की बात करते हैं तो वहां पर हमारा 8 से 10 किलो 1 बीघे में लगता है, तो वहां बीज की बचत होती है। अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो हमारी सिंचाई कम लगती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सिंचाई
1: बिल्कुल
0: का हम सिंचाई का जो हमारा दर
1: लागत
0: है
1: लागत होगी वो
0: लागत
1: कम हो
0: वो
1: जाएगी।
0: 35 से 40% हम बचा सकते
1: अच्छा
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: और सीधे अगर हम लाइन में खाद डाल रहे हैं तो उसका भी हमको बहुत अच्छा उसका लाभ मिल सकता है, वहां भी हमारी लागत कम लगेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल इतना डॉक्टर साहब सोच समझ के अगर इतना खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों के लाभ होए। एक जोन और समस्या किसान भाइयों के आवत वो बीज जनित जोन रोग होते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध किया जाता है कि कौनों फसल लगावे के पहले अगर जो बीजोपचार होता वो बहुत ज़रूरी होता, अगर बीजोपचार कर लिया जाए तो बहुत तरह की बेरामी से बचा जा सकता
0: जी
1: है। अपने धान में जो बीजोपचार बा या ये जो सीधी बुवाई में जो बीजोपचार है उसके बारे में किसान भाइयों के
0: देखिए
1: बतावे।
0: बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी अगर हम फसल लेने जा रहे हैं तो अगर बीज उपचार हम करते हैं तो बीज उपचार से हम फसलों को आगे आने वाली रोग बीमारियों से तो बचाते ही हैं और उस पर एक सुरक्षात्मक टीका लगा देते हैं। इसको हम ठीक उसी प्रकार से समझें जैसे हमारे आपके घर में कोई नवजात शिशु आता है तो डॉक्टर टीके के लिए एक चार्ट बना के देता है, हम उसको
1: बिल्कुल
0: लगवाते हैं और सुरक्षित और स्वस्थ करते हैं। उसी तरह हमारा जो बीज है वो भी तो एक नन्ना शिशु के समान है, अगर उसमें हम सुरक्षात्मक टीका यानी बीज शोधन कर देते हैं तो आगे आने वाली बहुत सी रोग बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। तो जब धान की हम छुपाई कर देते हैं, छुपाई करने के बाद उसमें कार्बेंडाजिम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अगर हम डाल के उसमें मिला देते हैं और मिलाने के बाद उसको छाया में सुखाकर उसकी बुआई करते हैं तो इससे बहुत हद तक हम रोग
1: बिल्कुल
0: बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब रोपाई विधि जोन बाटे उमन कहा जाता है कि जब पौधन की रोपाई की जाए या धान की रोपाई की जाए तो ओकर जो गहराई होता वो अगर पर्याप्त गहराई न रहे तो पौधा के गिरे के समस्या होता, पौधा गिर जाते ना फसल का नुकसान हो जाता।
0: जी
1: जो नहीं सीधी बोवाई बाटे एमन बीज कितनी गहराई पर बोवा जाए कि हमके जोन पौधा का जोन लंबाई बा जोन ओकर विकास बा उचित हो सके और हमके अच्छा फसल मिल सके तो कितनी गहराई होए के चाहे।
0: देखिए गहराई का इसमें सीधी बुआई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर 2 से 3 सेंटीमीटर अगर हम उसकी गहराई रखते हैं बीज की बुआई में तो हमारा जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से विकसित भी होगा, और सिंचाई जब हम करेंगे तो सिंचाई में वो पौधा नीचे बीज जो हमारा नीचे जाके हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और जब 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर हम बोते हैं तो पौधा हमारी अच्छी प्रकार से जड़ पकड़ लेगा और स्वस्थ पौधा निकलेगा और उससे हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ये तो सारी बात भाई भाई सिंचाई से लेकर के खरपतवार से लेकर के कैसे उकर बुवाई की जाए ये सारी बात भाई। एक हमरे मन में सवाल आवत बाटे कि कौनो विशेष किस्म बाटे सीधी बुवाई बरे या आपका जोन संकर नस्ल हैं या जोन देसी नस्ल हैं कौन ऐसी प्रजाति बाटे सीधी बुवाई बरे जो सबसे उपयुक्त बाटे किसान भाई ओकर उपयोग करें।
0: सीधी बुआई में दोनों प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं, चाहे वो देशी प्रजातियां हों। देशी प्रजाति में हमको बीज 8 से 10 किलोग्राम डालने की आवश्यकता है। अगर हम संकर प्रजाति का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको बीज प्रयोग करना पड़ेगा।
1: अच्छा अच्छा मोटा धान अगर लगावे तो जय कहा जाता है, अगर मोटा धान आप लगावते हैं तो ओकर जोन बुआई होता वो रज के दूर दूर पे हो तो ज्यादा बेहतर होता, और जोन महीन धान होता है भाई ओकर सघन बुआई होता।
0: जी
1: तो भाई अगर किसान भाई जोन डॉक्टर साहब बताएं कि भाई अगर देसी बाटे तो

0: कितना लिया जाए और संकर नस्ल बांटे तो कितना लिया जाए, तो उस हिसाब से अगर किसान भाई बुवाई करी तो निश्चित तौर पर उनके लाभ मिले। भैया देखा ई तो डॉक्टर साहब बात भाई किस्म का, और साथ ही साथ एक जो सवाल जात जात हम आपसे पूछा चाहब कि भाई बात पूरी बात भाई कि भाई रोपाई विधि कैसन बाटे और सीधी जो बुवाई होता वो कैसन होता, तो दोनों में आप ये डॉक्टर साहब बताएं कि दोनों में का अंतर बाटे, मतलब उत्पादन में का अंतर बाटे। मोटा मोटा हम आपसे ये जानना चाहब कि अगर कोनो किसान भाई चाहत बाटे कि हम नहीं सीधी बुवाई करब, अपन रोपाई वाली जोन विधि बा ओकर छोड़ के हम के सीधी बुवाई करे के बाटे, तो किसान भाई की कितना फायदा मिले आप ही बताएं।
1: सीधी बुआई में एक तो सबसे बढ़िया किसान को फायदा ये मिलता है कि 8 से 10 दिन पहले हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है।
0: अच्छा
1: दूसरा, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो चूंकि इसमें उत्पादन हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं, एक लाइन में होते हैं, हवा पानी प्रकाश उनको पर्याप्त मिलता है, तो जब उसमें बालियाँ भी ज़्यादा आएंगी और जब बालियाँ ज़्यादा आएंगी तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा होगा और रोपाई की अपेक्षा इसमें हमको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
0: अच्छा,
1: तो कम से कम 15 से 20% उसमें उत्पादन में इजाफा होगा अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाए के कहे के मतलब ये बा कि भाई जोन डॉक्टर साहब जानकारी दिहेन कि भाई अगर छिटकवा विधि से धान के बुवाई की जाए तो निश्चित तौर पर फायदे में आपके सबसे बड़ा फायदा तो ये बा कि भाई फसल पहले तैयार हो जाए, पानी का जोन आपके लागत बा पानी आपके कम लगे, साथ ही साथ जोन आपके मेहनत बा वह आपका कम हो जाए और आपको उत्पादन जोन बा 10 से 15% ज्यादा आपके उत्पादन मिले
1: जी
0: आपको जोन रोपाई विधि हो बा। तो डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया आप हमारे कार्यक्रम में आए नो किसान भाइयन के जोन जानकारी दिए, निश्चित तौर पर किसान भाई एक सुने हुई और अपने अगर अपने खेती किसानी में उपयोग में लेके आई तो भाई उनके फायदा हो, तो आप आए निकले लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, देखा छिटकवा विधि से धान की रोपाई बहुत विशेषज्ञ बहुत जानकार डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से बात बत कही रितेश कुमार शुक्ला कर रही। एक बात है कि धान के भी फसल में मौसम बहुत महत्वपूर्ण है,
3: बिल्कुल
2: कहे का
3: भैया।
2: मतलब जब इस समय मौसम है थोड़ा बरखा कम हो रही बाटे
3: हाँ
2: तो जितना अगर संभव हो सके धान की रोपाई वाले खेत में किसान भाई जल व्यवस्था करें, सिंचाई व्यवस्था करें, मौसम आगामी 1-2 दिन भी ऐसे ही बना रहे जौन की सूचना बाटे।
3: बिल्कुल भैया, देखा जैसे कि कहें ना कि इतना बढ़िया विशेषज्ञ भैया रहें और विशेषज्ञ भैया समय समय पर बढ़िया बढ़िया जानकारी देते रहते हैं, मौसम के
2: जी
3: अनुसार जानकारी देते रहते हैं फसल के अनुसार। लेकिन अगर हमारे किसान भैया लोगों के और कोनो विशेष जानकारी चाहिए, अपन सुझाव अपन प्रतिक्रिया हमका सभी के दे चाहें, कहें कि उन्हीं के कार्यक्रम आए पंचायत घर, तो उनके लिए हमारे सभी के व्हाट्सअप नंबर है 800-4926-250। नंबर एक बार और नोट कर लें,
2: हाँ
3: 800-4926-250। इस नंबर पर कह दें
2: हाँ।
3: व्हाट्सएप, जैसे आपन सुझाव हमका सभी के दे सके।
2: हाँ, और राधा बहनी उनके सुझाव के हमारे सभी अपने कार्यक्रम में रखा जाए, अपने
3: बिल्कुल
2: अधिकारियों के समक्ष रखा जाए, निश्चित रूप से उनकर जौन भी सुझाव हुआ उनकर समझा जाए और उकरे अनुरूप ही हमारे सभी बदलाव भी किया जाए।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: देखा
3: भैया,
2: समय समय से राधा बहनी सब ठीक लागत है, अब संझा भई बाटे, अब झोरा डंडा उठावा, कल फिर पंचायती में भेंट हुए, पंचन से विदा लीन जाए तो पंचो
3: राम
2: राम
3: राम।
2: राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,998 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।
1: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 7 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।
1: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। इस समझौते पर और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब 0 हो गया है। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। तकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर, फुटवेयर समेत दूसरे उत्पाद के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।
3: अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था, आज से ये शुल्क 0 हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क 0 हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक आज संपन्न हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। वहीं प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। समिति को प्राप्त सुझावों और अभिमतों पर आगामी चरणों में विचार किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी 10 राज्यों में जा चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले हैं और जो राष्ट्रहित में होगा वो संसद के सामने सिफारिश रखी जाएगी।
4: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमिटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा

0: होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर प्रदेश सरकार इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।
1: सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश के संबद्ध कॉलेजों के MBBS, MD, MS, नर्सिंग और पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही 55 मेधावी छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए बल्कि कठिनाइयों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
2: हमें ऐसे वडिलों से, ऐसे नागरिकों से, देश प्रेमियों से, शहीदों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही इसका इतिहास रचता है।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 MHz पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

0: ऐसे कहिए तो
1: आंगन वैसे ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे कुछ फूल होते हैं, कई लोगों के घर में हैंडपाइप होता है, लोग वहाँ पे आराम से बैठते हैं, गप्पे मारते हैं।
0: अचार बनाया जाता है, पापड़ सुखाया जाता है, मसाले तैयार किए जाते हैं, उसी आंगन में बैठ के गपशप होती है, नेहा जी सब्जियां कटती
1: और
0: हैं।
1: ख्वाब भी तो बुने जाते हैं
0: साथ ही साथ जब बारिश की बूंदें गिरती हैं आंगन में,
1: जी।
0: तो फिर वो आंगन ऐसा लगता है कि उसमें इतनी खूबसूरत सजावट कर दी है, और वो जो छमछम की एक आवाज़ आती है, तरंग होती है, वो हृदय में भी जाकर वहाँ पर भी धड़कती हुई सी महसूस होती है, और मन बावरा जो होता है वो खिंचता हुआ सा चला आता है
1: देखने के लिए,
0: देखने के लिए और भीगने के लिए भी।
1: भीगने के लिए ना।
0: जी
1: आपको पता है ऐसा ही कुछ ख्याल फैज अनवर साहब के मन में आया। उन्होंने कागज पे उतार दिया और उस्ताद राशिद अली खान ने इतनी सुंदर रूहानी सी आवाज में जब जब भी मिट का ये गाना गाया। कौन सा सुने?
0: चलिए।

0: बोलते नगमे। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बोलते अनगमे कार्यक्रम में। वंदना जी नमस्कार।
1: नमस्कार नेहा जी, और दोस्तों को हमारा भी नमस्कार।
0: वंदना जी, आपने वैसे आंगन तो देखा ही होगा।
1: ओह क्या बात है, कैसी बात आप कह रही हैं। आंगन किसने नहीं देखा होगा नेहा जी।
0: फ्लैट में रहने वाले लोगों ने थोड़ा कम देखा होगा।
1: हाँ, ये भी आजकल के समय की तो दिक्कत है एक तरह।

0: कैसा लगा?
1: नेहा जी देखिए, अभी हम लोग खिलखिला कर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने ये गीत सुनवाया, ये पहला बस इसका मुखड़ा भर सुना है, तो बहुत सारी यादें जो होती हैं जहन में वो दस्तक देने लगती हैं, जो कुछ उदासियां लेकर आती हैं, एक मिलन का ख्वाब भी सजाती हैं, और एक इंतज़ार, ये जो प्रतीक्षा होती है, उसका जो दर्द होता है, तनाव होता है, वो लगता है कि ये जो बारिश हो रही है और जो होने वाली होगी जब कोई आएगा, तो वो जो बारिश आंसुओं की होती है, वो आंसू की बारिश जो है, वो उस बारिश में यानी सावन में जब ढलेगी तो हरियाली छा जाएगी और उम्मीद की एक रोशनी सी जाग पड़ेगी।
0: जरा सोचिए, जब इम्तियाज अली ने जब वी मेट बनाई, बिल्कुल बबली सा किरदार है करीना कपूर इस फिल्म में, उनका नाम गीत है, हैप्पी गो लकी और ठाएं लग रही हैं जैसे डायलॉग हैं, वहीं पे इम्तियाज अली ये सोचते हैं कि इस जनरेशन को भी कुछ ऐसे रूहानी गीत दे देना है जिसको वो सदियों तक याद रखें, और उन्होंने जो सोचा हुआ भी वैसा ही। तब उस्ताद राशिद अली खान साहब याद आते हैं और उन्होंने इसको ठुमरी और कजरी के अंदाज में गा दिया।
1: हम ये भी बता दें कि संदेश शांडिल्य ने इसका संगीत तैयार किया है, सारे गाने जो और जो संगीतबद्ध हुए हैं वो प्रीतम के संगीत निर्देशन में हुए हैं, और जिस हिसाब से कहानी की बुनावट की गई है, जहाँ पर एक शोख लड़की जब फर्स्ट हाफ में जो चुलबुली सी दिखाई पड़ती, जिसके व्यक्तित्व में जीवन जिंदगी बोलती हुई सी, नाचती हुई सी, घूमती हुई सी दिखाई पड़ती है, और वही लड़की जब सेकंड हाफ में आकर उदास होती है, जब प्रेम से मिले दुख को अपने भीतर वो पाती है, तब उसका व्यक्तित्व कितना थम सा जाता है, कितना रुक सा जाता है।

जरा देखिए, फैज अनवर साहब जब लिखते हैं कि नैना तेरे गजरारे हैं और अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई

सारे हैं। करीना कपूर को बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें दिखाया गया है, उनकी आँखों को, कि वो शाहिद कपूर से कुछ कहती नहीं है विरह से पहले, और अनजाने में ही बहुत सारी बातें दोनों के बीच हो जाती हैं, और गाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राग इस गीत का जो है तिलक कामोद में रिकॉर्ड किया गया है, और जब वो फैज़ अनवर साहब कहते हैं ना कि चंदा को ताको रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, कैसे वो कह देते हैं कि ये बात अभी तक एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कही तक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनकही बात कही हुई सी मालूम होती है कि जिंदगी जो शायद पहले अब मेरी थी वो अब तुम्हारी अमानत हो गई है। बहुत ही खूबसूरत है।

0: नेहा जी, बहुत ही खूबसूरत ये गीत था और इस गीत में शब्दों ने तो अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया ही किया, संगीत ने भी किया, आवाज़ ने तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ एक बांसुरी जो बज रही थी, जो सुनाई पड़ रही थी, वो दिल के जो हमारे जज्बात है, जो एहसास है, जो इस गीत को सुनने के दौरान थोड़े से उदास हो चले हैं, बेकरार से हो चले हैं, उसको और ज़्यादा बेकरारियाँ बख्श रहे थे, वो थे बांसुरी वादक नवीन कुमार जी।
1: बिल्कुल, नवीन कुमार जी की बांसुरी मीठी है और रूहानी है, और ये जो सहज से शब्द गहरे अर्थ लिए हुए मालूम पड़ रहे हैं इस गीत में, झूम झूम के, हम लोग कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन जब राशिद अली खान साहब गा रहे हैं तो अपनी गहराई में उतरते चले जाते हैं। मुझे लगता है ये उस्ताद साहब ही कर सकते थे।
0: बिल्कुल सच कह रही है नेहा जी, लेकिन हाँ, अभी जो सावन किसी के मिलन, किसी के आगमन की बात कर रहा था, जो झूम झूम के बरसेगा, वही सावन जब बहुत गहरी उदासियों की तरफ जाता है, तब जो आंखों से बारिश होती है, वो जो सावन बरसता है, वो दर्द का होता है, उसमें आहें छुपी होती हैं, बहुत सारी यादें भी छुपी होती हैं, जो दिल की जमी को भिगोती ही भिगोती हैं नेहा जी। और ये शानदार सा जो गीत अब आएगा, ये जुबिन गर्ग की आवाज़ में है। ऐसे गायक जिन्होंने दिल को मोह लिया, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही शानदार सा गीत।

0: Feeling blue. My heart says it can't be true. शब्दों को इतने खूबसूरत तरीके से पिरोकर संगीत बनाने का जो काम प्रीतम ने अद्भुत काम किया है, मुझे लगता है कि ये शायद कभी कभी ही संभव होता होगा। और कई बार मुझे ऐसा लगता है वंदना जी कि कुछ गानों को हम समझते नहीं हैं शुरुआत में, लेकिन अच्छे लगते हैं, शायद ये उन गानों में से एक है।
1: हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसी अनुभूति हो सकती है जैसे आपको अनुभव हुआ है।
0: हाँ,
1: जी
0: सच कह रही हूँ।
1: लेकिन जब भी कभी ये गीत रेडियो के जरिए हमारे कानों में पहुँचता है तो सीधे दिल पर उतर जाता है, क्योंकि इसमें जो शब्दों की बुनावट की गई है वो इतनी खूबसूरती के साथ मन के भावों को दर्शाया गया है। इसमें रिश्तों की जो पेचीदगी होती है, जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुखर दिखाई पड़ती है, जहाँ पर हमको समझ में नहीं आना है कि किसी रिश्ते में हमको बंधना है, जाना है या उसे छोड़ देना है, ये उआ पोह वाली जो स्थिति, कश्मकश वाली जो होती है नेहा जी, वो इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाई गई है। राहुल बोस नजर आ रहे हैं, जब हम राहुल बोस को देखते हैं तो इतने शानदार तरीके से वो एक आम जो व्यक्तित्व होता है आसपास जो लोग दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अपने आप को करेक्टर में वो ढाल लेते हैं और उसी रूप में यहाँ पर वो नजर भी आ रहे हैं।

0: जैसे ये गीत आगे बढ़ रहा है, मुझे याद है कि बड़े से सिल्वर स्क्रीन पर प्यार के साइड इफेक्ट रिलीज हुई थी
1: जी।
0: उस समय मैं कॉलेज डेज में थी और मयूर पुरी जी का ये जो लिखा हुआ गीत है, उनके बोल हैं, जाने क्या चाहे मन बावरा। लोग कई बार अपने ही मन को समझ नहीं पाते कि मन क्या चाह रहा है, जहन कुछ और चाहता है, दिल कुछ और चाहता है, कोई निर्णय नहीं है कि असल में हो क्या रहा है, हम चाहते क्या हैं। उसी कश्मकश की जो बात आप कह रही थी, रिश्ता जो बहुत ही खूबसूरत सा है, शायद वो जिम्मेदारी और कर्तव्य की मांग करता है कर्तव्य में जब हम चूकते हैं तब ये वाली लाइन बिल्कुल मुफीद जान पड़ती है, जाने क्या चाहे मन बावरा
1: नेहा जी, लेकिन साथ में जब ये बात आती है ना कि सघन अचल सराबोर होवे, जाने असुवन में क्या जोर होवे, तो ये जो एक बात होती है कि आंसू में इतनी ताकत होती है, और खास तौर पर जब प्रेम में बहाया हुआ जो एक एक कतरा होता है आंसू का, वो पत्थर दिल को तोड़ देता है।
0: मुझे इस गीत की जो ये आखिरी लाइन है, पवन पुरवा में मन उड़ता जाए, बदरा चंदा से मन जुड़ता जावे। कई बार हम जिंदगी जी रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से कोई आता है और जब किसी का आगमन होता है तो हम बादल से बात करने लगते हैं, चंदा को देखने लगते हैं। ऐसे हम इतने बिजी रहते हैं कि कभी सर उठा के देखते ही नहीं कि हमारे मस्तक के ऊपर चांद भी सोहता है क्योंकि हम ये बातें

0: कई बार हम लोगों ने बोलते हैं नगमे में ये बात की है कि इस तरह की बात शायद हम अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं कर सकते, तो बेस्ट फ्रेंड की जगह लेगा कौन? शायद चंदा लेगा।
1: लेकिन नेहा जी, जो बेस्ट फ्रेंड की जगह चंदा ले रहा है, लेकिन जब कभी उपेक्षा की हवा ठोकर मारती है तो टूटे पतंग की डोर जैसा मन जो होता है, वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता है ये पतंग कहाँ जाकर दिल की ठहरेगी, फट जाएगी किसी तार में अटक कर, या ज़मीन पर कहीं गिरी मिली होगी, क्षत विक्षत सी नज़र आएगी। तो दिल का भी यही हाल होता है, जब तक चीज़ें अपने अनुकूल होती है तो बहुत अच्छा लगता है मन को भी, और वो चांद और सितारे सब एक अलग रूप रंग में नज़र आते हैं जो दिल को खुशियां बख्शते हैं। लेकिन वही प्रेम अगर ज़रा सा भी कठोरता बरतता है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो मन
0: की सच्चाई से जब हम वाकिफ होते हैं ना
1: जी,
0: जो सामाजिक सच्चाई भी होती है।
1: देखिए अनिया जी, समाज चाहे जैसे कितनी भी तमाम तरह की बाधाएं क्यों ना खड़ी करे, लेकिन अगर प्रेम उसमें बाधा नहीं डालता है तो सब कुछ स्वीकार्य होता है। लेकिन जब प्रेम बाधित कर देता है, प्रेम की तरफ से कोई प्रताड़ना मिलती है दिल को, तब वो असहनीय पीड़ा दे जाता है। तो वही भाव यहाँ पर भी नजर आ रहा है।

0: दोस्तों, इन दो प्यारे से गीतों के बाद एक गजल की धुन आपको सुनाई पड़ रही है क्या? बोलिए।
1: नेहा जी, बिल्कुल सुनाई पड़ रही है।
0: अब यहीं पर एक मिनट, नहीं नहीं, आप धुन से पहचानिए कि ये क्या हो सकता है, पहचानिए पहले, उसके बाद कुछ बात करेंगे।

0: इस धुन से पहचानिए।
1: देखिए नेहा जी, जो मुझे पहचान में बात आ रही है, यहाँ पर भी उदासियों का ही जोर है, क्योंकि जो एक आवाज उभरेगी अब वो दिल के बड़े ही करीब है हम सबके ही। तो एक खूबसूरत सी गजल जिसका संगीत तैयार किया है जगजीत सिंह ने, लेकिन गाया किसने है, चलिए सुनते हैं।
0: हाँ,

हाँ अच्छा, याद कीजिए आपने कुछ समय पहले जब ये गज़ल इंट्रोड्यूस किया था, हम दोनों सिस्टम पर बैठे हुए थे और आपने कहा कि ये वाले गज़ल सेव करके रखते हैं और लेंगे कभी। जब आपने ये बात कही तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं सुन रही थी, एक बार सुना, घर गई, दो बार मैंने उसको सुना। पता नहीं क्यों, जैसे कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि आप उससे दूर जाना चाहते हैं लेकिन फिर वो पुकारती है। ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ, पहली बार एस

0: सुब्रमण्य साहब बंदिनी फिल्म में, वो गाना आपको याद होगा,
1: मेरे साजन है उस पार,
0: उस पार
1: जी।
0: और ये मेरे साथ ये दूसरा वाक्या है। मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे डिटैच होना है, मैं नहीं सुनूंगी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। इतनी पवित्र सी आवाज़ है, मुझे लगता है जैसे जो आप आंगन में वो बारिश की बूंदों की बात कर रही थी प्रोग्राम के शुरुआत में ही, जब एक पवित्र सी बूंद टपकती है और दिल का चैन चुरा लेती है, शायद वैसा ही मुझे कुछ लगा है।
1: और ये चित्रा सिंह जी की आवाज़ है, जो कि जगजीत सिंह जी की शरीके हयात रही हैं, और दोनों का प्रेम का बहुत ही खूबसूरत रूप दिखाई पड़ता है जब हम इन दोनों के गीत सुनते हैं साथ साथ। और इतनी खूबसूरती के साथ लफ्ज़ों को पिरोया गया है, एक एक अगर लफ्ज़ इसके देखेंगे तो इतनी गहराई लिए हुए है, इतनी गहरी वो बात करता है, असर पैदा करता है कि हमारा हृदय भी खिंचा सा चला जा रहा है।

दोस्तों, जब इस गज़ल का अगला हिस्सा या अगला शेर हम कहें, जब वो गा रही हैं, मैं एक ख्वाब ही सही आपकी अमानत हूँ। कई बार लोग जो है वो अपने ख्यालों से प्रेम करने लगते हैं, तो इसी गज़ल के ज़रिए, इस शेर के ज़रिए ये बात कही जा रही है, हो सकता है कि मैं ख्वाब हूँ, लेकिन इसको उसी तरह से संजोना जैसे कि हम एक काया को संजोते हैं, जैसे कि हम कोई बहुत ही प्यारी चीज़ को संजो करके रखते हैं, उसको देखते हैं, उसके साथ जीते हैं। ये मुझे लगता है कि कल्पना की गहराई या उसकी पराकाष्ठा कहें, बहुत ही सुंदर है। जब आप ठहरेंगे तो पता चलेगा कि आपके जहन में न जाने कितने सारे ख्वाबों ने कब जन्म लिया होगा और वो आपके साथ चल रहे हैं, अनजाने में ही सही।

0: वाह क्या बात है, शायर जब शायरी करता है तो वो कितने एहसासों के दरमियान वो गुजरता है, वो अपने एहसास पिरोता है और हर एक दिल जो उसे सामने दिखाई पड़ता है, हर दिल को पढ़ता है और अपनी शायरी में अपने सफ़े पर उसे कलमबद्ध कर लेता है। तो यहाँ पर जो ये शायर हैं प्रेम वारबर्टनी साहब, उनकी ये खूबसूरत सी गज़ल है और हर चीज़ को सजो के रख लेने वाली ये बात होती है। तो इस तरह की जो गज़लें होती हैं वो भी सजो कर रखने लायक होती हैं। इस गज़ल में और भी बहुत सारे शेर हैं जिसमें कि एक बहुत ही खूबसूरत शेर है नेहा जी, जिसे इस गज़ल में नहीं लिया गया है लेकिन है वो इतना खूबसूरत कि उसे कहे बिना मन रुक नहीं रहा है। तो कहिए
1: तो न रोकिए खुद को।
0: तो देखिए वो कहते हैं ना कि भरी बहार का सीना है जख्म जख्म मगर सबा ने गाई है लोरी शफीक माँ की तरह।
1: वाह,
0: तो ये कितनी बड़ी बात है, एक ममत्व की छांव तले

जब हम होते हैं तो हम चाहे कितने भी जख्मी क्यों ना हो, लेकिन हमको हर एक जख्म हमारा भरता हुआ सा महसूस होता है, क्योंकि वो एक ममता की छांव तले उसे दुलार प्यार मिल रहा होता है, मरहम की तरह से वो जख्म पे लगता है ममत्व। तो ये देखिए आगे जो बात कही जाएगी अब वो भी बहुत ही दिलचस्प है और दिल के बहुत करीब कही जाने वाली वो बात है।

0: वंदना जी, दोस्तों मैं सच कहूँ तो मैं प्रेम साहब से पहली बार मुखातिब हो रही हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नई हूँ, तो ये जाहिर है। कई बार हम लोगों ने मजरूह सुल्तानपुरी साहब की, शैलेंद्र जी की और हसर जयपुरी साहब की, फैज़ अनवर साहब की बात की है, लेकिन जब हम अभी प्रेम साहब को पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अलग तरह की गहराई है और आप मुरीद होते जा रहे हैं। क्या कहूँ कितने सारे अर्थ इसमें छुपे हुए हैं। ये जो रुत है, ये जो समा है, कहीं बीत न जाए खिजां की तरह। ये शायद पतझड़ की बात हो रही है एक आखिरी पड़ाव, एक आखिरी पल की बात हो रही है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जो पुकार उठ रही है, जो बसंत की तरह से किसी को महसूस हो रही है, वो पुकार सुनने में देर ना की जाए, नहीं तो फिर पता चलेगा कि वो पतझड़ का मौसम कब आ जाएगा, वो पतझड़ ऐसा जो स्थायी हो जाए शायद, तो इससे बचना चाहिए। और नेहा जी, समय अब बच नहीं रहा है कि बहुत सारी बातें और की जाए। बहुत ही खूबसूरत गीतों, नगमों को हम लोग आज बोलते नगमे में पिरो कर लाए हैं। दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी हमारी ये पेशकश
0: जी,
1: लेकिन अभी फ़िलहाल विदा लेने का समय आ गया है, तो दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।
0: बोलते नगमे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे। वाचन स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत यानी चित्रपट संगीत।

अगला गीत फिल्म दोस्ती से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
1: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवंत स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का

सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष।

0: ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ध्वज तथा कपिध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है तालध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है, जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हो। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं, स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय, विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रु भाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं, तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पोहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहां राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
3: हरि ओम तत्सत श्री श्री जगन्नाथ।
0: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
4: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के

0: बाद उनको तपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। जितने कृत्या आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में, सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वर्ण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
1: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
2: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पहंडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहंडी में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्यचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
1: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
3: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड,

0: फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी, सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
1: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
2: स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन एंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिचुअल्स, द नीतिस एज वी कॉल, एफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन and all the concerned departments of the state government and also many of the government of India, they are working in close coordination to facilitate a very safe, orderly and spiritually fulfilling Ratha Yatra for the devotees coming from far across the world. The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the sabbats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers, and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication.

0: Nation to facilitate a very safe, orderly and spiritually fulfilling Ratha Yatra for the devotees coming from far across the world. The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the Sabbats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city, and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
1: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
2: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं MS सुबुलक्ष्मी के स्वर में मीराबाई की भक्ति रचना।

इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और

0: फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
0: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था, आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
0: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
2: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं

0: के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
1: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन

0: सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
4: Us industry ko aur aage badhane ke liye भी इसमें प्रावधान।
2: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. He said the scheme is aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value.

0: points, or 0.1%, to settle at 24,079. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 gained nearly 0.3% and small-cap 100 index jumped almost 0.7%. In the forex market today, the rupee depreciated by 6 paise to close at 96 rupees and 26 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Gaurav Dhawan Lal for Akashvani News.
1: Three Indian women boxers won gold medals, while 10 others claimed silver medals at the Asian Under-19 and Under-23 Championships in Jakarta today. In the Under-19 category, Chandrika Pujari won the gold medal in 51-kilogram weight class, while Prachi claimed gold in the 57-kilogram category. In the Under-23 division, Nisha won the gold medal in the 54-kilogram weight class. Neeti Chand, Kajal, Muskan and Priyanka won silver medals. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta in the US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Earlier, Spain stormed into the final of the tournament. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Three Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under-19 and Under-23 Championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England tonight for a place in the final. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 46 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और ये कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट जिस हिस्से का इहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वरुणा दरिया के किनारे तकरीबन 43 किलोमीटर तवील 6 से 4 लेन वाले सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिस पर कुल सरमाया लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए होगी। इसे

0: वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाई अड्डे, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रसाई में नुमाया बेहतरी भी आएगी। मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम की तश्कील के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमिकॉन 1.0 प्रोग्राम में तवज्जो सनत के आगाज और उसे कायम करने पर थी और सेमिकॉन 2.0 के तहत सभी अहम जरूरी चिप्स भारत में ही डिजाइन की जाएंगी और इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के इख्तिताम तक मुल्क चिप डिजाइन करने के मामले में खुद कफील बन जाएगा।
1: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के
0: जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि भारत ने अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ पहले ही शराकत दारियां कायम की हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि सेमिकॉन 2.0 के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इम्कान है। मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि आइंदा 5 बरस के लिए ये स्कीम नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इसकी मुद्दत के दौरान मजमुई तौर पर अंदाजन 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमुई बरामदात के 7,50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
3: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की खातिर कौमी सरमायाकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क में गैस पर मबनी यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के कयाम के लिए यूरिया के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है ताकि खुद कफालत के हदफ को हासिल किया जा सके।
3: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिजुल अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को 0% महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवासाजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहिदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहिदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहिदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अहम और बड़े तिजारती मुआहिदों में से एक है जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर

0: लिंडी कैमरॉन ने कहा कि ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्थीवल ने कहा कि इस मुआहदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर CP राधा कृष्णन ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदा CETA और समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहदा भारत और बरतानिया के दैरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदा CETA से भारत के किसानों, कारोबारी अफराद और MSMEs को काफी फायदा होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तरा के शोबों में भारतीय बाहमी तआवुन बढ़ेगा और हुनरमंद भारतीय अफराद की आमदोरफ्त आसान होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत बरतानिया में आर्जी तौर पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारतीय कंपनियों की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा है कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकार उन्होंने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरक्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बुशहर को भी निशाना बनाया गया, जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तंसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मुहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाह पासदारान इंकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरीन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कमान सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। उसने कहा है कि ये हमले बुहरे हिंद में अमरीका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल के बहाने बहरी रास्तों की नाकाबंदी के जवाब में किए गए हैं। उसने इस नाकाबंदी पर मगरबी एशिया से तवानाई की सभी बरामदात को रोक देने की भी धमकी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो जिंद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट CSR पर जोर दिया, ताकि स्टार्टअप्स महारत की तरक्की और एग्रीटेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों, जरिए तहकीक और देही बिरादरियों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें।
1: निश्चित तौर पर जो समझौते हुए हैं देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग, व्यापार जगत, उनको एक नई ताकत मिलेगी।
0: चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाई की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल, जो 28 जुलाई तक जारी रहना था, अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाई की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप, तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मवा

तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0-2 से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के नौ उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन $14 करोड़ मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया,
4: नमस्कार।
2: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
3: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए, और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होती हैं, तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस

0: नहीं हो पाती हैं क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स है वो हम यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे, और दूसरा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है, हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट्रिटी है, जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
1: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है।
2: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या तलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ थे प्रोसेस फूड्स के ऊपर वो घट के जीरो हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है उसमें जीरो हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है उसमें 18% था उसमें जीरो हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स वो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 18% जीरो हो जाएगा। लेदर एंड

0: फुटवेयर में 16% था उसमें जीरो हो जाएगा, और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था उसमें भी जीरो हो जाएगा, और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा कि हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इम्पोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है, इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त, तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने की डर है, उसके साथ साथ जो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं ये सारे सेक्टर्स में, और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं, इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है, उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स करते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो जो कंट्रीब्यूशन जो है, उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारी मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके का मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं। एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। एक कोटा के थ्रू जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़ेगा। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारे इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। अब देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल

0: बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
1: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूं कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, ये तो पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की
0: जी,
1: उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है, उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल कीकृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो FTAs जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो को जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
0: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
2: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारे जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी, उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि एफटीए आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कंपीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं ये समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
0: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
1: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर

0: में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर ली हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहाँ पे, जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफ़ी एक धक्का पहुँचा था। तो मेरा मानना ये है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है, उसमें एक काफ़ी एक धक्का मिला है उसको। और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज़्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, ईयू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था, उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है, उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबैम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट जो होती है, वो 15 से 20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूँ कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा, ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी, वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है, वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही हैं, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज़्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज़्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज़्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं, उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारे इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की, और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और उनको और ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की, और उनके और ज़्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
0: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें

0: तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो ज़रूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीज़ों में, सब चीज़ों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब ज़ीरो में आ चुकी है. नाउ ज़ीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज़्यादातर एमएसएमई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती हैं, उनको नौकरी मिलती है. उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी. और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी जो पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा. तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है. और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये सर्ज हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती हैं वो उनकी वृद्धि ज़रूर होगी.
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्राजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हर एक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है
1: एमएसएमई
2: इनको सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई के सपोर्ट के साथ उनका जो ट्राजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्राजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रेमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
0: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा, हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट

0: मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
1: शुक्रिया,
2: थैंक यू, धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम कुछ बातें करेंगे आपसे और आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे से गीत। कहते हैं, नफरत को हजार मौके दो कि वो खत्म हो जाए, मगर मोहब्बत को कोई भी ऐसा मौका मत दो कि वो टूट जाए। दिलों को जोड़ना ही सबसे बड़ा मजहब है साहब। तो आओ आज इस कार्यक्रम को अपने एहसासों से खूबसूरत सी सजाएं। दोस्तों, जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई एक चेहरा, कोई पुरानी याद या कोई अधूरी सी कहानी। लेकिन असल में प्रेम सिर्फ किसी एक शख्स से नहीं होता। प्रेम तो वो खुशबू है जो बिना किसी भेदभाव के हर किसी को महका देता है। माँ की ममता में प्रेम है, पिता के मौन संरक्षण में प्रेम है, दोस्तों की बेमतलब बकवास में प्रेम है, और अनजानों की मदद करने में जो सुकून है ना, वही तो असली प्रेम है। हाथों में हाथ ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, दिलों का दिलों से जुड़ा होना ही तो मोहब्बत।

तो दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का गीत आशा भोसले और बप्पी लाहिड़ी की आवाज़ों में। दोस्तों मजहब जात पात और सरहदें ये सब तो इंसानों ने बनाई, ऊपर वाले ने तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत बनाई। आज के इस दौर में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां हर कोई मोबाइल स्क्रीन में खोया है, वहां सौहार्द की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सौहार्द क्या है दोस्तों? अरे जब आप किसी उदास चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं, जब आप किसी की बात को बिना आंखें सुन लेते हैं, भाई वही तो सौहार्द है। कहते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं ना, तो बातें संगीत के माध्यम से होती।

हम आपको सुनवा रहे हैं हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। रचना समीर की है और धुन बनाई है निखिल विनय ने।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रेम और सौहार्द की। प्रेम और सौहार्द मानव चेतना के दो ऐसे अनुपम सूत्र हैं जो सृष्टि को एक सुंदर व्यवस्था और आत्मीयता में पिरोते हैं। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच का मौन और गहरा संवाद है। समर्पण और स्वीकार, जहाँ बिना किसी शर्त के दूसरे के अस्तित्व को वैसा ही स्वीकार किया जाए जैसा वो है, तो वही प्रेम है। जब मैं और मेरा की संकीर्ण सीमाएं टूटकर हम में विलीन हो जाती हैं, तो प्रेम का जन्म होता है। ये हृदय की वो कोमलता है जो बिना कुछ मांगे सब कुछ न्योछावर करने का हौसला रखती है। सुंदर और पवित्र हृदय का होना ही सौहार्द है। ये वो सेतु है जो अलग अलग विचारों, स्वभावों और व्यक्तित्वों को एक साथ जोड़ता है। दोस्तों, जब हम दूसरों के सुख दुख को अपने हृदय से महसूस करते हैं और उन्हें गले लगाते हैं, उनके अस्तित्व का आदर करते हैं, तब सौहार्द फलीभूत होता है। जैसे एक उपवन में अलग अलग रंगों और सुगंधों के फूल मिलकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही समाज में मतभेदों के बीच जो मधुर तालमेल होता है ना दोस्तों, वही सौहार्द है। प्रेम यदि ऊर्जा है तो भीतर के एकाकीपन को मिटाता है सौहार्द। सौहार्द वो सुगंध है जो बाहर के वातावरण को जीवंत और शांतिपूर्ण बनाता है। प्रेम से हृदय खिलता है और सौहार्द से संसार।

हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सूर्यवंशी का गीत आशा भोसले और मंगल सिंह की आवाजों में। रचना कुलवंत जानी की है और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपस में जो बातें कही, सुनी, जो जज्बात महसूस किए, उन्हें सिर्फ यहीं मत छोड़ जाइएगा। इस प्रेम की महक को अपने साथ, अपने घरों, अपने मोहल्लों और अपने दिलों में लेकर संजो कर रखिएगा, क्योंकि नफरत फैलाना तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन सौहार्द की एक छोटी सी लौ जलाए रखना ही असली इंसानियत है। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही। मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने से पहले आज हम खुद से एक छोटा सा वादा करें कि हम आप जहाँ भी रहेंगे, प्रेम और सौहार्द का एक दिया हमेशा रोशन रखेंगे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सीआईडी का गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन बनाई ओपी नैयर ने। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का सफ़र आपने तय किया अपने दोस्त सावित्री श्रीवास्तव के साथ, तो हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

समाप्त होता है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन। आपके साथ तबले पर संगत की है कुबेरनाथ मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन। आपके साथ तबले पर संगत की कुबेरनाथ मिश्र ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और